0: फुर्सत के रात
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
2: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो
1: प्रभात आराधना, हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: परमेश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम पूजा के साथ है संध्या। नमस्कार आपको पूजा।
1: नमस्कार रिया, सभी को मेरा नमस्कार। जल आपूर्ति की एक नई योजना तैयार की गई है। आज शनिवार से निर्वाचन क्षेत्र नंबर 15 लाकावेन फिनिक्स के उन सभी इलाकों में फिर से पानी की आपूर्ति की जाएगी जो पानी की कटौती से प्रभावित थे। नई योजना के तहत वाकौर फिनिक्स में बारी बारी से पानी की आपूर्ति की जाएगी। हर दो दिन में एक शहर को 5 घंटे तक पानी दिया जाएगा। इस प्रकार वाकौर फिनिक्स और सैंपिया में सुबह 3 बजे से 8 बजे तक पानी की आपूर्ति होगी। अगले दिन इसी समय क्यूपिप फॉरेस्ट साइड और फ्लोरियाल में पानी की आपूर्ति की जाएगी। इस वितरण योजना का उद्देश्य माओ वाकौर जलाशय से पानी प्राप्त करने वाले सभी इलाकों में पानी की समान और न्यायसंगत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। और कैबिनेट की बैठक में कल लिए गए फैसलों में उन लोगों को पानी की 2 टंकियां और 1 पंप मुफ्त में वितरित किया जाएगा जिनके पास ये उपकरण नहीं है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस के समक्ष जाना होगा, ये प्रमाणित करना होगा कि उनके पास ये उपकरण नहीं है। कल रात कॉलिव्यू में 27 वर्षीय एक महिला को गोली लगने से विक्टोरिया अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। घटना के समय वो एक वैन में सवार थी और नौकरी से अपने घर वापस लौट रही थी। लगातार दूसरी रात कॉलिव्यू के निवासियों ने नलों में पानी नहीं आने के विरोध में टायर जलाए। स्थिति को काबू पर लाने के वास्ते पुलिस स्थल पर भी पहुंची। इसी दौरान कथित तौर पर गोली चलाई गई। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से डीजल आयात करने के एक समझौते की घोषणा की है। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब ईंधन की कीमतों में कमी लाने के लिए उन पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। और अब मौसम का हाल। पूर्व की ओर से आ रहे बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय बादल घिरे रहेंगे। देश के पूर्व दक्षिण और ऊंचाइयों पर रह रहकर वर्षा होगी। शाम को भी बादल कुछ छाए रहेंगे, खासकर देश के पश्चिम, उत्तर पश्चिम और सेंट्रल प्लाटू पर बारिश होने का अनुमान है। अन्य इलाकों में मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा। रात को भी मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय देर रात को देश के पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर बादल कुछ घिर आएंगे। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समंदर में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम तापमान 23 से 25, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 5:44 पर हुआ, सूर्यास्त शाम 6:10 पर होगा।
2: You're listening RM Free Radio.

0: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं और उसी से मग़फ़रत तलब करते हैं. हम अपने नफ्स के शर से और बुरे आमाल से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं. अल्लाह ताला जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और वो जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता. और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं. और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे.
1: सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. ये मनोरंजन रेडियो की उर्दू नशरियात है. मैं हूँ आपकी मेज़बान अबिनाज जान अली. सवाल खैर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है. इस एक घंटे की महफिल हमद व नात का आगाज़ कुरान की तिलावत से करने जा रहे हैं. अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, उर्दू तर्जुमा, फिर जिन लोगों ने तक्वा इख्तियार किया है उन्हें तो हम नजात दे देंगे.
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम.
3: अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला.

बेशक वो जो अपनी आवाजें पस्त करते हैं रसूलुल्लाह के पास, वो हैं जिनका दिल अल्लाह ने परहेजगारी के लिए परख लिया है, उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। बेशक वो जो तुम्हें हुजरों के बाहर से पुकारते हैं उनमें अक्सर बेअक्ल हैं, और अगर वो सब्र करते यहाँ तक कि आप उनके पास तशरीफ लाते तो ये उनके लिए बेहतर था, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है।

ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो कि कहीं किसी कौम को बेजाने ईजा न दे बैठो, फिर अपने किए पर पछताते रह जाओ। और जान लो कि तुम में अल्लाह के रसूल हैं, बहुत मामलों में अगर ये तुम्हारी खुशी करें तो तुम जरूर मशक्कत में पड़ो, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें ईमान प्यारा कर दिया है और उसे तुम्हारे दिलों में आरास्ता कर दिया, और कुफ्र और हुक्म उदूली और नाफरमानी तुम्हें नागवार कर दी। ऐसे ही लोग राह पर हैं। अल्लाह का फ़ज़्ल और एहसान और अल्लाह इल्म हिकमत वाला है।

0: الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
1: और अगर मुसलमानों के दो गिरोह आपस में लड़े तो उनमें सुलह कराओ, फिर अगर एक दूसरे पर ज्यादती करे तो उस ज्यादती वाले से लड़ो यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए, फिर अगर पलट आए तो इंसाफ के साथ उनमें इस्लाह कर दो और अदल करो, बेशक अदल वाले अल्लाह को प्यारे हैं। मुसलमान मुसलमान भाई हैं तो अपने दो भाइयों में सुलह करो और अल्लाह से डरो कि तुम पर रहमत हो।

ऐ ईमान वालों, न मर्द मर्दों से हंसें, अजब नहीं कि वो उन हंसने वालों से बेहतर हों, और न औरतें औरतों से, दूर नहीं कि वो उन हंसने वालियों से बेहतर हों। और आपस में ताना न करो और एक दूसरे के बुरे नाम न रखो, क्या ही बुरा नाम है मुसलमान होकर फासिक कहलाना, और जो तौबा न करें तो वही जालिम हैं।

ऐ ईमान वालों, बहुत गुमानों से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। और ऐब न ढूंढो और एक दूसरे की गीबत न करो। क्या तुम में कोई पसंद रखेगा कि अपने मरे भाई का गोश्त खाए, तो ये तुम्हें गवारा न होगा। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है।

ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें शाखें और कबीले किया कि आपस में पहचान रखो, बेशक अल्लाह के यहाँ तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो जो तुम में ज्यादा परहेजगार है, बेशक अल्लाह जानने वाला खबरदार है। गवार बोले, हम ईमान लाए। तुम फरमाओ, तुम ईमान तो न लाए। हाँ यूं कहो कि हम मुतीह हुए और अभी ईमान तुम्हारे दिनों में कहाँ दाखिल हुआ, और अगर तुम अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करोगे तो तुम्हारे किसी अमल का तुम्हें नुकसान न देगा, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है।

ईमान वाले तो वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए फिर शक न किया और अपनी जान और माल से अल्लाह की राह में जिहाद किया, वही सच्चे हैं। तुम फरमाओ, क्या तुम अल्लाह को अपना दीन बताते हो? और अल्लाह जानता है जो कुछ आसमान और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह सब कुछ जानता है।

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह और शाम 100 मर्तबा सुभानअल्लाह व बिहम्दिही कहे, कयामत के दिन कोई शख्स उससे अफजल अमल लेकर नहीं आएगा सिवाय उस शख्स के जिसने इतना ही कहा हो या उससे

अपने रब ही के पास लौटना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जो भी मंज़र देखा है कब्र उससे ज़्यादा घबराहट वाली है। बहवाला तिर्मिज़ी शरीफ। ऐ अल्लाह, हमें मौत से पहले बख्श दे और मौत के वक्त हम पर रहम फरमा और मौत के बाद हमें अजाब में मुब्तला न करना और क़यामत के दिन हमसे हिसाब न लेना। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है।

उर्दू तर्जुमा और तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ बेहतरीन सलूक करो। अगर उन दोनों में से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें हरगिज उफ़ तक न कहो और न उन्हें झड़को, बल्कि उनसे इज्जत और एहतराम के साथ बात करो। ऐ हमारे रब, उन दोनों पर रहम फरमा जैसे उन्होंने हमें बचपन में पाला। तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस बात पर शर्माता है कि बंदा उसकी तरफ हाथ उठाए और वो उसको खाली लौटा दे। ऐ हमारे रब, हम पर सब्र उंडेल दे और हमें साबित कदम रख। सामईन कराम, सबाल खैर प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। आपकी तवज्जो के लिए हम नहायत शुक्रगुजार हैं। अपनी मेज़बान अबीनाज जान अली को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening to RM3 Radio.

0: कसा काय मंडली
1: योर काइंड ऑफ म्यूजिक ऑल डे ऑल नाइट राइट हियर ऑन योर वन एंड ओनली स्टेशन
2: RM3 मनोरंजन रेडियो।

प्रिय श्रोताओं, सादर अभिवादन। श्रोताओं, भक्ति में भारी शर्त है निष्कामता की। सच्ची भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता। भक्ति के बदले

उत्तम गति मिलेगी, इस भावना को लेकर भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्त के लिए भक्ति का आनंद ही उसका फल है। वह शक्ति, सौंदर्य और शील के अनंत समुद्र के तट पर खड़ा होकर लहरें लेने में ही जीवन का परम फल मानता है।

साधारण सी बात है, जब भी कोई बालक जन्म लेता है तो उसके रोने की आवाज सुनकर सब खुशी मनाते हैं। भक्त कबीर ने कितने गहराई से सोचा होगा इस बात को, जो इतना बड़ा संदेश मानव जाति को दे दिया।

एक चादर के समान समझते हुए भक्त कबीर ने लिखा है, चदरिया झीनी रे झीनी, ये शरीर रूपी चादर किस प्रकार बनी, कैसे इस चादर का निर्माण हुआ,

शरीर ने जन्म लिया। जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी। रंगरेज कौन? गुरु के पास शिक्षा का रंग चढ़ाने के लिए इस चादर को भेजा गया।

से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद ये जीवन आरंभ होता है और ऐसे समय पर एक चेतावनी

श्रोताओ, भक्ति रागात्मिका वृत्ति है, हृदय का एक भाव है। प्रेम भाव उसे स्वरूप और उसे गुण समूह पर टिक सकता है जो दृश्य जगत में हमें आकर्षित करता है। इसी जगत के बीच भासित होता हुआ स्वरूप ही प्रेम या भक्ति का आलंबन हो सकता है। इस जगत से सर्वथा असंबद्ध किसी अव्यक्त सत्ता से प्रेम करना सर्वथा असंभव है। भक्ति केवल ज्ञाता या दृष्टा के रूप में ही ईश्वर की भावना लेकर संतुष्ट नहीं हो सकती। वह ज्ञात्री पक्ष और ज्ञेय पक्ष दोनों को लेकर चलती है।

श्रोताओं, यदि परमात्मा को, भगवान को देखना है तो उन्हें व्यक्त जगत के संबंध से देखना चाहिए। इस मध्यस्थ के बिना आत्मा और परमात्मा का संबंध व्यक्त ही नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि भारतीय भक्ति मार्ग व्यक्ति कल्याण और लोक कल्याण दोनों के लिए हैं। वह लोक या जगत को छोड़कर नहीं चल सकता। भक्ति मार्ग का तो सिद्धांत है भगवान को बाहर जगत में देखना।

सूरदास जी ने गज और ग्राह की कथा का उल्लेख किया है। गज नदी में पानी पीने के लिए गया और ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया और नदी की ओर खींचने लगा। जब गज के नाक कान पानी में डूबने लगे तो उसने प्रभु को स्मरण किया, प्रभु को याद किया और प्रभु ने आके उसकी रक्षा की। लेकिन यदि हम गहराई में जाएं तो इस भजन में केवल गज ग्राह की कथा नहीं है, ये हम सब की कथा है। हम सब इस संसार रूपी सिंधु में आते हैं और यहाँ माया मोह रूपी ग्राह हमें पकड़ लेता है और उससे छूटने का बस एक ही तरीका है कि हम भगवान का नाम लें और भगवान हमारी रक्षा करें।

श्रोताओं, भारतीय परंपरा के भक्त में दुराव छिपाव की प्रवृत्ति नहीं होती, उसे यह प्रकट करना नहीं रहता कि जो बातें मैं जानता हूँ उन्हें कोई बिरला ही समझ सकता है। इससे अपनी वाणी को अटपटी और रहस्यमय बनाने की आवश्यकता उसे कभी नहीं होती। वह सीधी सादी सामान्य बात को भी रूपकों में लपेटकर पहेली बनाने और असंबद्धता के साथ कहने नहीं जाता। बात यह है कि वह अपना प्रेम किसी अज्ञात के प्रति नहीं बताता, उसका उपास्य तो ज्ञात है।

श्रोताओं, भक्त का प्रेम मार्ग स्वाभाविक और सीधा है, जिस पर चलना सब जानते हैं। वह ऐसा नहीं जिसे कोई बिरला ही जानता हो या पा सकता हो। वह तो संसार में सबके लिए सुलभ है, और सरलता इस मार्ग का नित्य लक्षण है। चाहे मन की सरलता हो या वचन की सरलता अथवा कर्म की सरलता, है ना?

0: श्रोताओ, ईश्वर के शरण में जाकर भक्त निर्भय हो जाता है, वह सदाचार की मूर्ति बन जाता है। उसका स्वभाव अत्यंत सरल, शांत, गंभीर और नम्र हो जाता है। आज इतना ही, हमें आज्ञा दे।
1: सूरदास जी कहते हैं, भगवान राम का ध्यान करने से हमारा ये जन्म तो सुधर ही जाता है, लेकिन इतना ही नहीं, आने वाला जीवन भी सुधर जाता है।

0: दिन के 12 बजे है। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे पूजा नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को मेरा नमस्कार। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। कल रात आधी रात से, मतलब आधी रात से कुछ पहले कॉलिव्यू में गोली चलने की घटना पेश आई। इस मामले में संबंधित पुलिस सौजैत को गिरफ्तार कर हिरासत में रखा गया है। आज सुबह जारी पुलिस के एक बयान के अनुसार बंदूक को सुरक्षित कब्जे में ले लिया गया है। गोली लगने से 27 वर्षीय एक महिला घायल हुई है। उसे विक्टोरिया अस्पताल की ICU में भर्ती कराया गया है। सुपर मार्केट में काम करने वाली ये महिला एक वान में सवार थी। वो नौकरी से घर वापस लौट रही थी, तभी ये घटना पेश आई। लगातार दूसरी रात इलाके के निवासियों ने पानी न मिलने के विरोध में टायर जलाए। कैबिनेट की बैठक में कल लिए गए इस फैसले पर बात करते हैं। उन लोगों को पानी की दो टंकियां और एक पंप मुफ्त में वितरित किया जाएगा जिनके पास ये उपकरण नहीं है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जनता को डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस के समक्ष ये प्रमाणित करना होगा कि उनके पास पानी की टंकी और पंप नहीं है। ये पहल वाटर टैंक एंड डोमेस्टिक वाटर पंप ग्रांट स्कीम के तहत लागू की जा रही है। मानसिक स्वास्थ्य हमारी संपूर्ण स्वास्थ्य का एक अभिन्न हिस्सा है। आज शनिवार 10 अक्टूबर को मनाए जा रहे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मानसिक सेहत का ध्यान रखने के महत्व पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से पोर्ट लुइस स्थित ओडिसेओ में सुबह 10 बजे से द सनफ्लावर चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संवाद, दूसरों की बात ध्यान से सुनने और संवेदनशीलता एवं सहानुभूति के साथ पेश आने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जा रहा है। फाउंडेशन की संस्थापक ने बताया कि इस कार्यक्रम में एक मनोवैज्ञानिक भी मौजूद रहेगी। वो मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने और कठिन दौर से गुजर रहे किसी व्यक्ति का सहयोग करने के लिए व्यावहारिक सुझाव साझा करेगी। और विदेश में इसायास तूफान ने अमरीका के फ्लो

0: फ्लोरिडा राज्य में दस्तक दी है। इस तूफान के कारण जानलेवा बाढ़ और तेज हवाएं चलने की आशंका है, जिसके चलते हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कल शुक्रवार शाम फ्लोरिडा के पश्चिमी पनहांडल क्षेत्र से टकराने से पहले ये तूफान थोड़ा कमजोर होकर श्रेणी दो का तूफान बन गया। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 175 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। फ्लोरिडा, अलाबामा और जॉर्जिया ने आपातकाल की घोषणा की है। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए कुछ ही समय में शोक समाचार। नंबर 63 राहुल रिवे स्ट्रीट पोर्ट लुइस में 62 साल की 62 years old श्रीमती मांता रामलगन पैदाशी नाम भुजेधर और जिन्हें लोग आरती नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनके मकान नंबर 63 राहुल रिवे स्ट्रीट पोर्ट लुइस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रिले वाले दो प्रेत की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे अप टू 30 PM। हाईलैंड्स फिनिक्स में 89 साल के 89 ईयर्स ओल्ड जनाब अबू तालिब केडन, जिन्हें लोग तालिब नाम से ज्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 1:30 बजे इनके मकान हाईलैंड्स फिनिक्स से उठाकर फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। एवेन्यू वेरा सामी आयर मोसलमा राफ्रे लियोशे तेरूज में 43 साल के 43 ईयर्स ओल्ड श्री दिनेश रामनियाल, जिन्हें लोग बंटे और बैन नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनके मकान एवेन्यू वीरासामी अय्यर मोसलमोब राफ्रे लियोशित अरूज से उठाकर सिपाही ब्रिले वाले दो प्रेत की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट नून। मोसलमो वेर्जे लेबैन नंबर 2 पेची वेर्जे पोएतो साबल में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड श्रीमती गोइंदामा मधुरे, जिन्हें लोग मैडम नायकन नाम से जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनके बेटे अंगामुतु नायकन मधुरे के मकान मोसलमा वेर्जे लेबैन नंबर 2 पेची वेर्जे पोएतो साबल से उठाकर सेलवी पेची रिविया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमोरो 10 AM। और देसाई स्ट्रीट बुबासे में 87 साल के 87 ईयर्स ओल्ड श्री प्रवीण लाल देवचंद करमन शाह, जिन्हें लोग प्रवीण लाल नाम से अधिक जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। वे बीजी केयर होम पालमा कैट्रोबोन में रहते थे। इनकी अर्थी मंगलवार 13 अक्टूबर को दिन के 1:30 बजे इनके भतीजे गिरीश देसाई के मकान देसाई स्ट्रीट बुबास से उठाकर शिबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन ट्यूसडे एट 1:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: खैरी मिलाते चलिए, दिन के 12:07 हुए हैं।
5: सुहाना सफर।
4: हमारे प्यारे प्यारे म्यूजिक लवर्स का तहे दिल से नमन। हेलो आदाब। अभी आप रेडियो मनोरंजन की लहरों से जुड़े हुए हैं, जहां आप पुराने गीतों का आनंद लेने वाले हैं। आप ही की पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है सुहाना सफर, और मैं आपकी सखी अनीता हाजिर हो गई हूँ हमेशा की तरह, हर शनिवार की तरह। यस दोस्तों, हमारा और आपका साथ रहेगा दोपहर के 2 बजे तक। वेल, आशा करते हैं कि आप लोग जो है स्वस्थ हैं और आप लोगों का

सप्ताहांत बेहतरीन तरीके से शुरू हो चुका है। तो दोस्तों देर ना करते हुए आइए आपके नाम एक खूबसूरत गाना करते हैं। फिल्म है सितमगढ़।

जी दोस्तों, व्हाट एन अनबीटेबल रिप्लेसेबल इरिप्लेसेबल पेयर ऑफ हिंदी सिनेमा म्यूजिक. ऑफ कोर्स द सॉफ्टनेस इन किशोर दा वॉइस इज मैजिकल और साथ दे रही है आशा जी. किशोर दा और आशा जी जो हैं वे तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मखमली आवाज़ें इन गानों के माध्यम से अभी तक गूंज रही है. साथ ही साथ लवली पेयरिंग ऑफ ऋषि कपूर और पूनम ढिनल. तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला एक बहुत ही प्यारा गाना है. जी दोस्तों, फिल्म खामोशी का यह गाना हम नाना पाटेकर जी को याद करते हुए इस गाने को चला रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके सभी फैंस के नाम यह गाना जाता है.

0: सुहाना सफर सुहाना
1: सफर। जी दोस्तों, आपको कहीं पर भी जाना नहीं है, यहाँ पर रेडियो मनोरंजन पर आपके आपकी पसंद के गाने बज रहे हैं यहाँ पर, तो ज़रूर साथ दीजिएगा। जी दोस्तों, नाना पाटेकर जी, जिनका असली नाम विश्वनाथ पाटेकर है, उनका जन्म 1 जनवरी 1951 में हुआ था और उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 2026 को हुई। नाना पाटेकर भारतीय फिल्मों के अभिनेता थे, वे लेखक और फिल्म निर्माता भी थे। और नाना पाटेकर जी हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता माने जाते हैं। उनके जो अभिनय, एक्टिंग के सभी जो है फैंस हैं, और यही कारण है कि उन्हें आज तक कई बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। वे इंडस्ट्री में अपने डायलॉग को बोलने की स्टाइल को लेकर काफी मशहूर थे। उनके अभिनय के दीवाने आज भी लोग हैं और हमेशा आ रहेंगे। आपको शत शत नमन नाना पाटेकर जी, आपने अपने अभिनय से हमें बहुत एंटरटेन किया। और ब्रितानिया से चांदनी जी साथ दे रही हैं, आप सुनना चाह रही है फिल्म सूर्यवंशी का गाना, तो चलिए यह गाना आपके नाम एंजॉय।

जी दोस्तों, मनोज सोहन जी जो हैं लिस्पेरेंस त्रिबुशे से साथ दे रहे हैं और आप सुनना चाह रहे हैं फिल्म मेरे हमसफर का गाना। एंड ऑफ कोर्स यहाँ गाना जाएगा खासकर आपकी प्यारी पत्नी नजीमा के नाम जो बगल में खड़ी हुई है और आपको जो हैं सुन रही है, साथ ही साथ पूरे सोहन परिवार ऑफ लिस्पेरेंस त्रिबुशे गया सिंह आश्रम के जितने भी बुजुर्ग हैं उनके नाम और जितने भी लोग बीमार हैं अस्पताल में हैं उन सब के नाम यहाँ गाना जाएगा। एंड वी आर होपिंग दैट कि जल्द से जल्द आप जो हैं स्वस्थ होकर ठीक होकर घर आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ गाना आप लोगों के नाम ऑफ कोर्स लता जी एंड मुकेश जी की आवाज़ों में।

0: जी दोस्तों, हम आपके रेडियो का हम सफ़र हैं, अनीता है यहाँ पर, और यहाँ पर 12:35 हो चुके हैं और नथखुदाम से रेहाना जी साथ दे रही है और आप सुनना चाह रहे हैं दिल्ली का ठग वाला गाना, ये रहते ये मौसम। ऑफ कोर्स वंस अगेन किशोर दा एंड आशा भोंसले जी, और यह गाना जो है आपकी प्यारी सहेलियाँ माला फाउद और सुरेखा जी के नाम जाएगा, तो चलिए एंजॉय यह गाना।
1: ये रहते ये मौसम

दोस्तों, एक उम्र के बाद इंसान परफेक्ट इंसान नहीं ढूंढता। वह ढूंढता है सुकून ऐसा, एक इंसान जिसके पास अपनी सारी थकान बेझिझक छोड़ के आया जा सके, जो बहस जीतने के लिए नहीं बल्कि रिश्ते को बचाए रखने के लिए बातें करे। इसलिए तो कहा जाता है कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, और ये तब समझ में आती है जब हम परफेक्ट इंसान ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं कि परफेक्ट इंसान तो है ही नहीं। जो भी लोग हमारे पास हैं, उनमें कुछ खूबियां हैं, उनमें कुछ हुनर है, और सभी में कुछ ना कुछ तो खराबियां भी होती है। लेकिन जिस तरह से हम उस इंसान के साथ जीना सीख लेते हैं, वही सबसे बड़ी बात है। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुहाना सफर अनिता के साथ, अभी से लेकर 2 बजे तक, और यहाँ पर त्रियोली से कल्याणी जी भी साथ दे रही है, और आप सुनना चाह रही हैं फिल्म जूली का गाना, और यह गाना जाएगा ऑफ कोर्स आपकी बेटियों के नाम, श्वेता, हर्षिना, श्रेष्ठा, नितिशा, पति विरेन है, छोटा नातिन जियांश है, शिवांश है, और पूरे डुआउ परिवार के नाम।

0: जी दोस्तों, हर दिन हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। बस उस कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश हमें करनी चाहिए, तभी तो ज़िंदगी बेहतरीन बनती है। और यहाँ पर जो है माधुरी जी साथ दे रही है, और आप फिल्म दाग का गाना सुनना चाह रही है, पुरानी फिल्म दाग का गाना। तो चलिए, यह गाना आपके नाम और ऑफ कोर्स परी के नाम।
1: आज क्या है

जी दोस्तों, मालिनी जी मोदालबिया से साथ दे रही हैं और आप कहती है कि आप जो हैं नाना जी पाटेकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनकी ही फिल्म का ये गाना सुनना चाह रही है, फिल्म प्रहार का गाना। तो चलिए यह गाना आपके नाम, और साथ ही साथ बेल्जियम से जो है प्रकाशवती जी साथ दे रही है और आप कहती है कि वहाँ पर मौसम बहुत ही सुहाना है और आप भी जो हैं आपने फिल्म गुलाम में मुस्तफ़ा का गाना मांगा है लेकिन वो नहीं मिल रहा है। तो चलिए नाना पाटेकर जी पर आधारित फिल्म प्रहार का गाना आप दोनों के नाम।

जी दोस्तों, करिश्मा फ्लेक्स से देवयानी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आप फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का गाना सुनना चाह रही हैं और यह गाना जाएगा ऑफ कोर्स पूरे छेदी और देवधारी परिवार के नाम। और इसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे 1 बजे के समाचारों की ओर।

0: गुड आफ्टरनून, इट्स 1 PM. मचली सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. आपसे अदिति नमस्कार.
1: नमस्कार निर्मली, श्रोताओं को भी नमस्कार. कोलंबिया में कल रात गोलियां चलने की एक वारदात पेश आई. संबद्ध पुलिस सर्जेंट को हिरासत में लिया गया है. इस मामले में आज सुबह पुलिस की तरफ से जारी कम्युनिके में कहा गया कि इस्तेमाल किया गया हथियार जब्त कर लिया गया है. इस वारदात में 27 वर्षीय एक महिला को गोली लगी है. उसे विक्टोरिया अस्पताल के ICU में दाखिल किया गया है. एक हाइपरमार्केट में काम करने वाली ये महिला नौकरी के बाद वैन से घर लौट रही थी जब ये वारदात पेश आई. पानी की कमी के चलते लगातार दूसरी रात कोलंबिया में अस्थिरता बनी रही. लोगों ने आक्रोश जताने के लिए सड़कों पर पहिए जलाए. प्रदर्शनों पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने हस्तक्षेप किया जिसके दौरान ये हादसा पेश आया. रेजिडेंस रिचलियो में आज एक चिल्ड्रंस क्लब का उद्घाटन किया गया. मौके पर उप प्रधानमंत्री आर्याना वोमारी और जूनियर मिनिस्टर कुगान पारापेन मौजूद हुए. नेशनल चिल्ड्रंस काउंसिल की देखरेख में स्थापित इस क्लब में खेलकूद की गतिविधियां और विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी. मकसद है बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देना और उनके बेहतर विकास के लिए जरूरी समर्थन उपलब्ध कराना. अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पनामा में 7.7 अंकों की तीव्रता वाला एक जोरदार भूकंप पेश आया है जिसके चलते कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और कई बिल्डिंग्स ढह गए हैं. 4.6 मिलियन लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं. इसके चलते आसपास सुनामी की चेतावनी जारी की गई है. ये थी अब तक की खबरें. थोड़ी देर में शोक समाचार. नंबर 63 राहुल रिवे स्ट्रीट पोर्ट लुइस में 62 साल की 62 ईयर्स ओल्ड श्रीमती मानता रामलगन, पिता श्री नाम बुजेदर, जो आरती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थियाज दिन के ढाई बजे इनके मकान नंबर 63 राहुल रिवे स्ट्रीट पोर्ट लुइस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूली वाले देवपद की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे 2:30 PM. शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है.
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. सफर
0: जी दोस्तों, 1:03 हुए हैं और आप सुन रहे हैं सुहाना सफर कार्यक्रम अनीता के साथ. और फिर से कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है. आप लोगों की पसंद के गाने यहां पर बज रहे हैं और आशा करते हैं कि आप इनको सुनकर जो है मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं. और दोस्तों, कल से जो है नवरात्रि शुरू होने वाली है और कई लोग जो हैं साफ़ सफाई में लगे हुए हैं. ऑफ़ कोर्स साफ़ सफाई कीजिए, लेकिन अधिक पानी जो है ज़ाया मत

कीजिए। तो आज के इस कार्यक्रम सगन जो है यहाँ पर जो सगन आवर का जो कार्यक्रम है जो पहला गाना है हम ऑफ कोर्स शेरो वाली माँ को डेडिकेट करेंगे। और गाने जो हैं यहाँ पर कई लोगों ने शेरो वाली माँ या दुर्गा माँ के लिए गाने मांगे हैं। यहाँ पर जो है अनीता जी है फिकम फ्लैग से और आप कहती हैं कि आप कैसी हैं, हम स्वस्थ हैं और आशा करते हैं कि आप भी स्वस्थ हैं। साथ ही साथ आप कहती है कि दुर्गा माँ की स्वागत के लिए आप जो है तैयारी कर रही है और आशा करते हैं कि दुर्गा माँ का जो आशीर्वाद है हम सब पर जो है उनकी कृपा बनाए रहे, उनका आशीर्वाद हमें मिले। ऑफ कोर्स थैंक यू इसके लिए जी। और यही कामना करते हैं कि सभी की जो पूजा है कि अर्चना है वो जो है पूरी हो। साथ ही साथ सुदेवी जी मौका से साथ दे रही है और आप भी जो हैं माँ भवानी पर एक गाना सुनना चाह रही है। फिकम फ्लैग क्षमा कीजिए बन में फ्लैग से शीला जी भी जो है नवरात्रि के उपलक्ष पर गाना मांग रही है और जो अगला गाना जाएगा वो पूरे मकुना परिवार के नाम जाएगा। और हम यही कामना करते हैं कि आप लोगों की जो नवरात्रि है वो शुभ हो, मंगल हो। तो चलिए मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म सुहा का गाना सुनते हैं।

और यही गाना जाएगा बाकवा जी की, फुलवंती जी के नाम और साथ ही साथ पूरे बाल गोविंद परिवार के नाम। और आप कहती है कि आज रेखा जी का जन्मदिन है और साथ ही साथ कल जो है अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन है, तो बढ़िया हो गया यह गाना हमने चला दिया दोनों के, जो दोनों पर आधारित है। तो चलिए यह गाना आप सबके नाम।

जी दोस्तों, कांगोप से श्यामा जी साथ दे रही हैं और आप कहती है कि नाना पाटेकर के जाने से उनके कई फैंस को क्षति पहुंची है, तो उनको आप जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। और आज आपकी फरमाइश है फिल्म सरस्वती चंद्र का गाना, और यही गाना जाएगा ऑफ कोर्स आपके भाई जो हैं, आपके भाई के नाम भाभी नम्रता है, भाई है जयप्रकाश, नेफ्यू है युधिष केशव, आपकी बहन है विजय, साथ ही साथ आपकी सखियाँ हैं वीना हामफल है, विश्वानी दुखी है और नंदिनी ओकलू है। तो चलिए यहाँ गाना आप लोगों के नाम।

दोस्तों, कहा गया है कि दुनिया में दी जाने वाली सबसे बड़ी तसल्ली सब ठीक हो जाएगा। जी दोस्तों, दुनिया में दी जाने वाली सबसे बड़ी तसल्ली सब ठीक हो जाएगा, पर कोई यही क्यों नहीं बताता कि तब तक कितना कुछ खो जाएगा। वक्त के साथ घाव जरूर भर जाते हैं, वक्त के साथ घाव जरूर भर जाते हैं, मगर कोई ये नहीं बताता कि वो वक्त तुम्हें कितना बदल जाएगा। जिस दर्द से तुम भागोगे, वो दर्द ही तुम्हें मजबूत बनाएगा। जिस प्यार को तुम इस दुनिया में ढूंढोगे, वो तजुर्बा ही तुम्हें खुद के करीब लाएगा। फिर समझ में आएगा कि जो खोया था वो तो तुम्हें निखारने आया था। इस जिंदगी के सच से तुम्हें रूबरू करवाने आया था। और शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जी दोस्तों, सब ठीक हो जाएगा, और यही ध्यान में रखते हुए हम जीवन में आगे बढ़ते हैं कि सब ठीक हो ही जाएगा। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, तो इसी विश्वास के साथ हमें जीवन जीना चाहिए, तभी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। जी दोस्तों, मोचिडा से राधा भार्गवीन जी भी साथ दे रही हैं, और आपकी फरमाइश है फिल्म हम साया का गाना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, और यह गाना जाएगा शोभा के लिए, देवरानी के लिए, और ख़ासकर आपकी बहन वीना के लिए।

जी दोस्तों, दिल की आवाज, ऑफ कोर्स दिल की आवाज कभी-कभी सुनना चाहिए और अपने आप को खुश रखना चाहिए। क्यूपिप से नम्रता जी साथ दे रही है और आप कहती है कि घर का कामकाज करते करते आप हमारे गानों का आनंद ले रही है और आज आपकी फरमाइश है बात एक रात की। ऑफ कोर्स यह गाना सुमन कल्याणपुर जी ने गाया है, तो चलिए यह गाना आपके नाम करते हैं और सभी सुनने वालों के नाम जो अभी साथ दे रहे हैं।

जी दोस्तों, आज जो है किसी खास का जन्मदिन है। आज जो है अनीता लाल जी जो मदालबिया में रहती है, आज उनका जन्मदिन है। तो आपको सालगिरह की ढेर सारे शुभकामनाएं अनीता जी, और ऑफ कोर्स आशीर्वाद ना शुभकामनाएं आ रही है इटू परिवार की ओर से, गोगा परिवार, लालजी परिवार, नागेश्वर परिवार और सभी दोस्तों जो है आपको बधाइयाँ दे रहे हैं ऑफ कोर्स। तो चलिए, हम यही आशा करते हैं और यही कामना करते हैं कि आपका जो यहाँ दिन है वो खुशियों से भर जाए और यूं ही आप जीवन में खुश रहे। तो चलिए, एक शो फॉर एवर का गाना आपके नाम, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर।

0: हैप्पी बर्थडे अनीता जी। और दिव्य से कविता जी जो हैं साथ दे रही हैं, और आप अपने दोस्त मोहन, सबीना, रेखा और सभी दोस्तों के नाम एक गाना चलाना चाहती है। तो चलिए फिल्म सच्चा झूठा का गाना आप लोगों के नाम।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

हाय हाय 70s 80s का जो गाना है वाओ। और यहाँ पर कटरबोर्न से बाबू अनंतवा जी साथ दे रहे हैं और आप फिल्म जोहर महबूब इन गोवा का गाना सुनना चाह रहे हैं, लेकिन जो गाना आपने मांगा है अखियों के नूर वो नहीं मिल रहा है सिस्टम में। सिर्फ दो गाने हैं यहाँ पर, तो एक गाना हम चला देंगे उसी फिल्म का गाना, लेकिन जो गाना आपने मांगा है वो नहीं मिल रहा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। तो चलिए पूरे अनंतवा परिवार के नाम यह गाना, ये दो दीवाने दिल के। आशा है कि आपको यह गाना जरूर पसंद आएगा।

जी दोस्तों, जितने भी लोग साथ दे रहे हैं, थैंक यू साथ देने के लिए। और रिवे जो वहाँ से माला जी भी है, और आपने कहा कि बहू किरण की पसंद का गाना चला दीजिए फिल्म गाइड से, तेरे मेरे सपने, और यही गाना जाएगा ऑफ कोर्स आपके लिए माला जी, किरण, केविन, कनिल, कनिष, कविश, सत्यम और शिव के नाम।

जी दोस्तों, खुद पलमा का ट्रबोन से रेखा जी की फरमाइश है फिल्म साथी का गाना जिंदगी की तलाश में, आपके लिए यह गाना।

जी दोस्तों, यहाँ पर एक मैसेज आया है लेकिन नाम नहीं है और कहा जा रहा है प्रणाम, प्लीज प्ले इस सॉन्ग फॉर everyone. We wish that rain comes soon from all members of Maa Kali Mandir from Petite Rivière, Jai Mata Rani.

0: जी दोस्तों, यहाँ पर हमारे जाने का समय आ ही गया है। सिर्फ एक अंतिम गाना यहाँ पर बचा हुआ है और ठीक एक बजे आप समाचार सुन पाएंगे। उसके बाद क्षमा कीजिए, ठीक दो बजे आप समाचार सुन पाएंगे और उसके बाद अलका जी और सुमी के माध्यम से उनकी प्रस्तुतिकरण से इतिहास के झरोखे कार्यक्रम सुन पाएंगे। यहाँ पर एक प्यारा सा मैसेज आया है, हेलो लवली लकी चार्म लेडी, ऑसम शो, थैंक यू जी। और फिल्म संपन्न का गाना जाएगा दावन श्वेता रवीश प्रिशा लवशा आपादू परिवार ऑफ होशनुआ। साथ ही साथ यह गाना जाएगा देवानंद पैसान के नाम जो रिव्या जुपो से सुन रहे हैं। बोबासन से हरीश जी हैं और आपकी अनु साथ में है।
1: इतना भी ना चाहो मुझे,
0: तो यहाँ गाना आप सभी लिसनर्स के नाम और इसी के साथ अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार, ठीक है।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: सुनते हैं देश विदेश की खबरें. अदिति से आपको नमस्कार.
3: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार. कोलंबिया में कल रात गोलियां चलने की एक वारदात पेश आई. संबद्ध पुलिस सर्जेंट को हिरासत में लिया गया है और उसे आज अदालत में पेश किया गया. इस मामले में आज सुबह पुलिस की तरफ से जारी कम्युनिके में कहा गया कि इस्तेमाल किया गया हथियार जब्त कर लिया गया है. इस वारदात में 27 वर्षीय एक महिला को गोली लगी है. उसे विक्टोरिया अस्पताल की ICU में दाखिल किया गया है. एक हाइपरमार्केट में काम करने वाली ये महिला नौकरी के बाद वैन से घर लौट रही थी जब ये वारदात पेश आई. पानी की कमी के चलते लगातार दूसरी रात कोलंबिया में अस्थिरता बनी रही. लोगों ने आक्रोश जताने के लिए सड़कों पर पहिए जलाए. प्रदर्शनों पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने हस्तक्षेप किया जिसके दौरान ये हादसा पेश आया. काथोबो नगर पालिका ने इस महीने की शुरुआत से शहर भर में कूड़ा उठाने का एक वृहद अभियान शुरू किया है. इसके लिए 1.2 मिलियन रुपए लगाए गए हैं. 10 लोरियां कार्यरत की गई हैं और करीब 60 सफाई कर्मचारियों को इस अभियान में शामिल किया गया है. रेजिडेंस रिशलियो में आज एक चिल्ड्रंस क्लब का उद्घाटन किया गया. मौके पर उप प्रधानमंत्री आर्यन नवमारी और जूनियर मिनिस्टर कुगान पारापेन मौजूद हुए. नेशनल चिल्ड्रंस काउंसिल की देखरेख में स्थापित इस क्लब में खेलकूद की गतिविधियां और विभिन्न अन्य कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी. मकसद है बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देना और उनके बेहतर विकास के लिए जरूरी समर्थन उपलब्ध कराना. अंतर्राष्ट्रीय खबरों में भारत की राजधानी दिल्ली में आज वृहद प्रदर्शनों के लिए जंतर मंतर में इकट्ठा हुए लोगों को रोकने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है. 500 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है. ये प्रदर्शन जेन जी द्वारा हो रहे हैं. वे इलेक्टोरल कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. ये थी अब तक की खबरें. थोड़ी देर में शोक समाचार. शोक समाचार सुनिए. नंबर 164 एवेन्यू बेतो काथोबोन में, नंबर 164 एवेन्यू बेतो काथोबोन में 93 साल की 93 ईयर्स ओल्ड श्रीमती शांता बालगोबिन. श्रीमती शांता बालगोबिन पिताश्री नाम बाबूराम, जो भानु नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे के मकान नंबर 164 एवेन्यू बेतो काथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोडेगोद की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM. शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है.
4: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
5: इतिहास के झरोखों से.
6: नमस्कार श्रोताओं, इतिहास के झरोखे से आप रेडियो मनोरंजन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जुड़ने के लिए आप फोन भी कर सकते हैं 4028070 पर. हम आपके साथ जुड़ चुके हैं. श्रोताओं, आज मैं और सुमिता सोच रहे थे कि चलिए अब तो थोड़ा पूजा का माहौल है, थोड़ा पितृपक्ष भी सब लोग मना चुके हैं, तो ज़रा बॉलीवुड के कुछ एक्टर एक्ट्रेस को पकड़ा जाए, देखते हैं, क्योंकि उन लोगों का प्रभाव जीवन पर बहुत अधिक होता है और इतिहास के पन्ने पलटे तो भाषा, साहित्य, फैशन, यहाँ तक कि बाल कैसे काटे जाएँ, इसका भी उन झरोखों में झाँके तो हम पाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनका प्रभाव पड़ता है. आप याद करिए, एक ज़माने में एक्टर ने बेल बॉटम पहनी तो सारे लड़के उसी तरह की पैंट पहन रहे थे. अगर किसी ने अपना हेयर कट एक दूसरी तरह का करवाया तो सभी सैलून्स पर सब नाम ही कहते थे कि अमिताभ बच्चन हेयर कट, शाहरुख खान हेयर कट,
7: राहुल रॉय हेयर कट बहुत पॉपुलर हुआ था 90 के सालों में.
6: साड़ी पहनने का ढंग, सजने का ढंग, अपने आप को प्रस्तुत करने का ढंग, यहाँ तक कि डायलॉग बोलने का अंदाज भी बच्चे कॉपी करते थे
7: जी.
6: तो श्रोताओं, इन फिल्मों का और खास करके ऐसे विशेष अभिनेता अभिनेत्रियों का प्रभाव समाज पर बहुत ज्यादा

0: पड़ा जिन्होंने कुछ विशेष फिल्में की, जिनको विशेष पुरस्कार मिले और उनकी छाप उम्र के साथ घटी नहीं, बढ़ती गई। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन को तो बिग बी कहा जाता है बॉलीवुड का। तो आप देखिए, कुछ ऐसे चरित्र हैं जिसमें हेमा मालिनी हैं, रेखा जी हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन हैं, इनकी छवि धूमिल नहीं होती है। मतलब ये चाहे बूढ़े भी हो रहे हैं तो भी फिल्म के पर्दे पर आते हैं तो उसका रूप ही कुछ अनोखा होता है। कोई भी फिल्म में वो काम करें, उनका जो अंदाज है अर्थात उनके भीतर का जो कलाकार है वह बूढ़ा नहीं होता है। तो आज मैंने और सुमी ने सोचा कि क्यों ना रेखा और अमिताभ बच्चन की जरा इतिहास के पन्नों से या उनकी जिंदगी के पन्नों को उलट पुलट किया जाए। वैसे तो रेखा जी मंच पर दिखती ही रहती हैं,
1: हाँ।
0: और इतना मेकअप कर लेती हैं कि आप उनके बुढ़ापे को समझ ही नहीं पाते हैं, पर जब उनको नृत्य के लिए कहा जाता है तो दिखता है कि बड़े ही लिमिटेड स्टेप्स भी लेती हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: और ऐसे अमिताभ बच्चन भी कुछ स्टेप्स लेते हैं, जैसे कभी खुशी कभी गम में बहुत सुंदर उनका नृत्य था पूरे ग्रुप के साथ, लेकिन वो जब कैमरा हाईलाइट करता है तो थोड़े समय के लिए ही करता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: क्योंकि आयु हर एक की होती है, वो चाहे कलाकार हो, हम हो या कोई भी हो। लेकिन फिर भी रेखा जी कहते हैं कि योग करती हैं, नृत्य करती हैं, जैसे हेमा मालिनी भी। मतलब अपने आप को यदि आप एक्टिव रखें तो बुढ़ापे को भी काफ़ी हद तक आप जीत पाते हैं। यही अमिताभ बच्चन जी के साथ भी है। वे लोगों से जुड़े रहते हैं, जीवन को व्यस्त रखते हैं और कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। कौन बनेगा करोड़पति इत्यादि हम जानते ही हैं। तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, कुछ करते रहते हैं तो जिंदा दिली आपके साथ ही चलती है। तो ये दोनों कलाकार रेखा जी और अमिताभ बच्चन जी, जिंदगी को खुशी से कैसे जीना है, क्योंकि दुख सबके हैं, अभाव सबके हैं, कभी जिंदगी में सारी चीज़ें सबकी पूरी नहीं होती। हम कह सकते हैं जया जी जितनी अकड़ती हैं, अब रेखा जी प्यार करती हैं अमिताभ से, लेकिन जिंदगी है, ये सब खेल उसमें होते हैं। तो अमिताभ जी और रेखा जी हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड के वे आइकॉन हैं जो आदर्श भी हैं, यथार्थ भी हैं, उनका इतिहास भी एक लंबा है, लेकिन आज भी वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्यों सुमी?
1: बिल्कुल। और अगर हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि आज एक ही बार में हम दो कलाकारों पर क्यों बात करेंगे, तो बात यह है कि आज 10 अक्टूबर को रेखा जी का जन्मदिन है और कल 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन जी अपना जन्मदिन मनाएंगे। तो हमने सोचा क्यों नहीं एक ही बार में दो ऐसे महान कलाकारों को लिया जाए, क्योंकि इन दोनों ने एक साथ काफी फिल्में भी की है
0: और पुरस्कार भी बहुत दिए हैं, फिल्म फेयर इत्यादि।
1: बिल्कुल,
0: दोनों ही पुरस्कृत हुए और अमिताभ बच्चन तो विश्व प्रसिद्ध आइकॉन है।
1: और अभी तक सोचिए इस उम्र में भी वो काम कर रहे हैं, केबीसी के मंच पर अभी भी जी अभी भी नजर आते हैं। और रेखा जी की बात करें तो काफी रियलिटी शोज में अभी भी वो दिखाई देती है, अवार्ड फंक्शन की बात करें तो। चलिए एक गाने के साथ प्रोग्राम की खूबसूरत शुरुआत करते हैं और फिर रेखा जी और अमिताभ जी के जीवन पर बातें करेंगे। अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो 4028070 है नंबर हमारा।

0: इतिहास के झरोखों से।
1: श्रोताओ, ये कलाकार यद्यपि अभी इतिहास तो नहीं बने हैं, लेकिन उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचे हुए हैं कि जब हम उनके पिछले पन्नों को खोलते हैं तो वे इतिहास ही बन चुके हैं। जिस दिन दुनिया को वो जो कुछ दे कर गए हैं और अभी भी दे रहे हैं, वह इतिहास के पन्नों से कभी नहीं मिटेगा। और आप सोचिए, रेखा जी को तो शुरू में सब एक सांवली एक्ट्रेस के रूप में गिना करते थे, उनको इतना भाव भी नहीं देते थे, लेकिन आज देखिए वो सफलता की वह सीढ़ी चढ़ चुकी हैं कि जहाँ पर ये रंग या दक्षिण भारतीय होने की बात, वो सब कुछ कहीं पीछे छूट गई है। आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनकी कितनी इज्जत करती है, क्यों? क्योंकि वे कला की उपासिका हैं। रेखा जी नृत्य को लेकर बहुत ही सीरियस है। आज भी जब मंच पर आती हैं, आप देखिए वो ग्रेस उनके जीवन में दिखती है। तो भारतीय जीवन में कला एक ग्रेस, एक जिसे कहते हैं एक सभ्यता है, वो रेखा जी में हमको दिखाई देती हैं। और उनकी फिल्मों में भी उनकी एक्टर, उन्होंने जो कलाकारी की और जो नृत्य प्रस्तुत किए क्लासिकल, वो अपने आप में विशेष हैं। इसीलिए उनको पद्मश्री, जो भारत का चौथा नागरिक जिसे कहते हैं कि एक सम्मान है, वह उनको प्राप्त हुआ।

0: सोचिए, एक और नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, और कितने सेवरल उनको, बहुत सारे उनको और भी अवार्ड मिले, लेकिन पद्मश्री मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक वे स्त्री हैं और फिल्म जगत में संघर्ष करते हुए अपनी उस ग्रेस को बनाए, जबकि हम कई बार कहते हैं कि फिल्म जगत में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन रेखा जी, हेमा मालिनी, इस तरह की जितनी भी आइकॉन हमारे यहाँ एक्ट्रेसेस हैं, माधुरी दीक्षित हैं, कईयों के नाम हम गिना सकते हैं, ये सभी अपने पैरों की छाप या कला की छाप इतिहास के पन्नों पर छोड़ चुकी हैं।
1: बिल्कुल। और रेखा जी की बात करें हम, अलका जी, तो साउथ के फिल्मों से ही इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी, और इनके माता पिता की बात करें तो वो भी जो है कला के क्षेत्र से जुड़े रहे इनके, हाँ, तो इसलिए बचपन ही से जो है वो इसी माहौल में पली बड़ी है, तो कला के प्रति इनकी रुचि जो है बचपन ही से थी। और फिर 70 के दशक में इन्होंने हिंदी फिल्म में जो है कदम रखा, और उसके बाद तो इतिहास ही है, हर कोई जानता है।
0: जो उन्होंने शुरू में की थी, और बचपन में तो एक तेलुगु फिल्म में चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में भी
1: उन्होंने काम किया था। और 70 का दशक आते आते इतनी बड़ी बड़ी फिल्में इन्होंने दी कि क्या कहे, घर, मुकद्दर का सिकंदर, खूबसूरत, उमराव जान, उत्सव, खून भरी मांग, इन सभी फिल्मों के नाम सुनते तो मानो आज भी मौका मिले तो बैठकर हम इन फिल्मों को देख सकते हैं।
0: और उमराव जान में तो जो उनकी एक्टिंग थी वो ऐतिहासिक ही थी, उमराव कैरेक्टर ही ऐतिहासिक,
1: बिल्कुल। और वो फिल्म इतनी पॉपुलर हुई थी कि उसका जो सीक्वल है वो बना था, उसमें ऐश्वर्या राय नजर आई थी।
0: अच्छा, बहुत सुंदर। तो चलते हैं, गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
2: इतिहास के झरोखों से

0: इतिहास के झरोखों से।
1: श्रोताओं, सचमुच सुंदर फिल्में उन्होंने दी, जैसे सावन भादो थी, रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की, बाद में कहानी किस्मत की गीत से तो एक सीरियल भी बना था, प्राण जाए पर वचन ना जाए, मतलब रेखा जी जैसे दो अनजाने, मुकद्दर का सिकंदर, इन सारों में जो उन्होंने रोल किया घर फिल्म, अपने आप में ये रोल अनोखे थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई भी रोल मिला और कर लिया, जिस रोल को भी किया या जिस कला को या जिस रूप को उन्होंने अपनाया, पूरी शिद्दत के साथ अपनाया। वे जहाँ पर भी किसी भी तरह का, वे चाहे महिला विक्टिम के रूप में रही या वो एक अच्छी पत्नी के रूप में रही या वो एक ऐसी पत्नी के रूप में रही जिसका शोषण हुआ, सभी जगह पर जहाँ पर भी उन्होंने अपने किरदार को जो निभाया वो अपने आप में विशेष था। इसीलिए एक खूबसूरत फिल्म जो 1980 में आई थी, उनको फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस मिला था, तो वो उनके भीतर था। ऐसे ही बेसहारा, सिलसिला, एक ही भूल, जीवन धारा, अगर तुम ना होते, इस दौरान उन्होंने अनेकों फिल्म समाज को दी और इन सब फिल्मों के कारण उनका जो रूप था वो जैसे सब उनको बहुत पसंद करने लगे। लेकिन अपने जीवन में हम आपको बताना चाहते हैं कि संगीत, नृत्य, योग, एक्सरसाइज करना, इन सब के लिए रेखा जी ने अपने आप को कभी पीछे नहीं किया। तो आपकी खूबसूरती, आपकी वो अदाएं या आपकी वो सभ्यता आपकी मेहनत से बनती हैं। कुछ भी ऐसा नहीं कि ईश्वर, ठीक है, रूप रंग देता है और उनको दिया ईश्वर ने, नैनक्ष उनके बहुत सुंदर हैं, लेकिन इसके बावजूद उस सुंदरता को बनाए रखने के लिए और उस सुंदरता को मजबूती देने के लिए उन्होंने अपने जीवन में बहुत डिसिप्लिन रखा, जिसका असर हमें आज भी दिखाई देता है। यदि उस तरह का अनुशासन उनका नहीं होता तो इस उम्र में भी वो जिस ग्रेस के साथ मंच पर आती हैं, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कई रोल तो ऐसे किए जो अपने आप में बड़े अनोखे थे, जैसे कामसूत्र फिल्म, उसमें रेखा जी ने स्वीकार किया टेल ऑफ लव को, आसान नहीं था वो रोल करना
2: और उस समय में ऐसे किरदार को निभाना, एक बहुत बड़ी बात है,
1: और बहुत ही सफलता से निभाया। मतलब उस समय तो लोग रेखा जी को एक रोमांटिक एक्ट्रेस के रूप में ही देखने लगे थे।
2: हाँ, और रोमांटिक एक्ट्रेस के रूप में बात करें तो परदेसिया जैसे फिल्म में अमिताभ जी के साथ वो नजर आई, वहीं पर खूबसूरत आपने इस फिल्म की बात की जिसमें एक चुलबुली जैसी लड़की का रोल उसने किया था। हाँ। लोगों ने उनके उस किरदार को भी बहुत ही पसंद किया था, और उसके साथ अगर रेखा जी की
1: नानी,
2: वो अभी कुछ समय के पहले आई थी,
1: बहुत ही सुंदर उसमें उन्होंने रोल किया, और एक महिला के जीवन में उम्र जो है वो सीमा नहीं होती। हाँ। आप बदल सकते हैं यदि बच्चे आपके साथ हैं, यंगस्टर्स आपके साथ हैं। 2014 की फिल्म उसमें उनका रोल बहुत सुंदर था, बहुत सराहा सभी,
2: मतलब कि कैसे उम्र के साथ साथ घर के अपने आप, अपने ही लोग आपको पूछते नहीं है, इज्जत नहीं देते हैं,
1: आप तो अब बूढ़ी हो गई हैं या आपको कुछ आता नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा संदेश पूरे महिला समाज को दिया।

0: कि जहां चाह वहां राह मिल जाती
1: बिल्कुल
0: है।
1: और अगर अवार्ड्स की बात करें हम अलका जी, तो उमराव जान इस फिल्म के लिए रेखा जी को जो है नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था, और फिर खूबसूरत और खून भरी मांग इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर की ओर से अवार्ड मिला था। और आपने तो बताया ही कि उन्हें 2010 में जो है पद्मश्री से भी नवाजा गया था। तो चलिए अभी के लिए उमराव जान इस फिल्म की बात की, तो इस फिल्म का ये गाना हो जाए।
0: ये फिल्म बहुत सुंदर है, ऐतिहासिक फिल्म है ये
1: जी।

0: इतिहास के झरोखों से।
1: श्रोताओं चलिए अब जरा बढ़ते हैं अमिताभ बच्चन की ओर। सचमुच अमिताभ बच्चन का जीवन अपने आप में भारतीय बॉलीवुड का एक जिसे कहते हैं इतिहास है। आज अमिताभ बच्चन जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि वे मानो एक वन मैन इंडस्ट्री हैं, और ये शब्द उनके लिए फ्रेंच डायरेक्टर ट्रूफॉल्ट ने इस्तेमाल किया था कि ये व्यक्ति वन मैन इंडस्ट्री है। आज हमारे साथ हमारे एक श्रोता भी जुड़े हैं, तो सुमी जी पहले उनको जरा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अमिताभ जी की ओर।
2: हेलो नमस्ते।
3: हेलो नमस्कार सुमी जी।
2: नमस्ते। अलका जी भी यहीं पर है।
3: नमस्ते। अलका दीदी को भी मेरा सादर प्रणाम है
2: जी। नमस्ते
3: जी। मैं राधा हूँ मौसीदा से, मेरा गला थोड़ा
1: खराब है। राधा जी नमस्ते, कैसी हैं
3: जी? मैं अच्छी हूँ दीदी, थोड़ा केवल गला खराब है।
2: चलिए आप ठीक हो जाए जल्दी से, ऐसी हम विश करते हैं। और बताइए क्या जोड़ना चाहेंगे आज?
3: गाना है, बजाना है, ठीक होना ही है
2: जी।
3: हाँ तो आप कलाकार के बारे में बात कर रहे हैं ना अमिताभ जी और रेखा जी पर। देखिए वैसे फिल्में मैं बहुत कम देखती हूँ, लेकिन कलाकार असली वही होते हैं जो अपनी असली जिंदगी में भी कुछ करें।
1: सही।
3: वैसे देखिए अमिताभ जी के बारे में मैं उनका बहुत आदर सम्मान करती हूँ, उनकी सारी मूवी बहुत अच्छी होती है
1: जी।
3: और रेखा जी की भी अदाकारी बहुत ही अच्छी है, सराहनीय है। लेकिन मैं अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी की कविताओं को मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ।
1: मधुशाला
3: और भी है,
1: निशानी मंत्रण
3: लिखा। हाँ बहुत सी उनकी रचनाएं हैं। उन्होंने जैसे लिखा है, बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर क्योंकि मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप बहना और अपनी मौज में रहना।
1: बहुत सुंदर।
3: हाँ तो देखिए ये वो तो एक अमिताभ जी उनके पिताजी इतने महान कवि इतिहासकार साहित्यकार थे, तो अब सोचिए उनका बेटा कैसा होगा।
1: और राधा जी ये संस्कार अमिताभ बच्चन में आए हैं।
3: हाँ,
1: ये भी कविता तो पढ़ना। देखिए मधुशाला को उन्होंने आवाज अपनी दी।
3: हाँ हाँ हाँ गाना गाने के सुर में उन्होंने गाया
1: उनके अंदर है, और उनके अंदर वो जो एक लेखक के संस्कार है वो दिखते हैं उनके अंदर।
3: हाँ उनके अंदर है। तो ऐसे कलाकार यदि रहे तो कैसे, अभी हमारे वो ना हमारे बड़े बड़े दुख की बात है, नाना पाटेकर जी हमारे बीच नहीं रहे।
1: अगर
3: उनके बारे में हम सोचें, उनको हम उनकी असलियत जिंदगी में हम झांकें अलका दीदी, अब उनकी फिल्मी दुनिया के से हटकर वो जैसे अपने जीवन गांव में बिताते थे, अपने बैलों के साथ, अपने खेतों में, अपने लोगों के साथ, तो वो एक बहुत प्रेरणादायक जीवन हम उनसे ले सकते हैं।
1: उनके जीवन वो मूल्य पर आधारित थे। वे कहते हैं, उनका एक डायलॉग चल रहा है ना यूट्यूब पर, क्या चाहिए हाँ, मरने के बाद नौ मन हाँ, लकड़ी और क्या चाहिए, सब यही हाँ, छूट हाँ, जाएगा उसे सुन के सचमुच।
3: और अब सभी लोग आए हैं मेरी मौत का तमाशा देखने। हाँ।

0: वो उनकी जो बात है, आपको लगता है कि वो सच में ये सब बोल रहे हैं, झूठ में नहीं, मतलब कि अपनी कला के अंदर नहीं, ये उनके अंदर से आ रहा है,
1: जीवन की सच्चाई। उन्होंने ये कहा लकड़ी गीली ना हो, क्योंकि मरने वाले को गलती ना लग जाए कि ये मेरे लिए रो रहा है।
0: हाँ, बहुत बहुत कड़वा सच है ये,
1: बहुत कड़वा सच है, सच में।
0: हाँ, लेकिन ये देखिए, हर इंसान की आखिरी यात्रा तो मौत ही है। एक कटु सत्य है, एक कटु सत्य है मौत
1: जी।
0: तो ऐसे ही उन्होंने अपना जीवन दिया और आज वो चले गए। तो ऐसे ही जितने भी महान कलाकार, कल अमिताभ जी के बारे में हमारी सोच ऐसी है, क्योंकि हमने उनकी सारी फिल्में देखी हैं।
1: आप देखिए ना, इन कलाकारों की विशेषता होती है, ये कभी भी ऐसा रोल नहीं लेते जिसमें किसी लड़की का रेप करना हो, या कोई ऐसी किसी लड़की को नीचा दिखाना हो, या कोई मूल्यों से हटकर हो। आप इनकी सभी फिल्में देख लीजिए, उसमें वो जो एक वैल्यू सब जगह पर दिखाई देती है।
0: हाँ, एक सम्मान, हाँ, नारियों को एक सम्मान उन्होंने जी, दिया है।
1: ऐसे रोल ये लोग बिल्कुल नहीं करते हैं,
0: कभी नहीं, कभी नहीं। उन लोगों ने हमें, और वैसे और भी ऐसे हैं, अब हम मीना कुमारी जी को ले लीजिए।
1: हाँ, मीना कुमारी, धर्मेंद्र जी,
0: हाँ,
1: उनके दोनों बेटे सनी और उनके दोनों ही बेटे, कभी उन्होंने ऐसे इस तरह का रोल नहीं किया जो समाज में मूल्यों का अवमूल्यन करे,
0: नहीं, कभी नहीं। इसलिए बहुत क्या करें, हम की कलाकारों का सम्मान हमें करना चाहिए,
1: ये असली कलाकार,
0: इन्हीं की वजह से तो कला जीवित है ना।
1: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: बहुत
1: धन्यवाद राधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद
0: आपको भी, बहुत
2: बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर चलिए, अगर आप भी, अन्य श्रोता भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 402-808-5685 नंबर हमारा, और यहाँ पर आप हमारा साथ दे सकते हैं। एक गाने के साथ हम आगे बढ़ते हैं,
1: चलिए ठीक।
3: इतिहास के झरोखों से

0: सचमुच श्रोताओं, हिंदी बॉलीवुड सिनेमा के डॉन ही हैं अमिताभ बच्चन। और एक बड़ी खुशी ये मिलती है कि ऐसे परिवार से थे। आप देखिए, बहुत सारे हमारे बॉलीवुड के ऐसे एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 12वीं क्लास भी पास नहीं की है, वे बस प्राइवेट स्कूल में गए, थोड़ा इंग्लिश बोलनी आ गई और पीना, बड़ी पार्टीज़ में थोड़ा उठने बैठने का सलीका। लेकिन अगर हम उनके पन्ने पलटें जीवन के, तो शिक्षा वहाँ पर दिखाई ही नहीं देती है। लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ ऐसा नहीं है। बचपन में भी उनके पिता ने उनको शेरवुड कॉलेज नैनीताल में भेजा था और उसके बाद वे BSc के लिए किरोड़ी मल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में गए और उन्होंने अपना BSc भी पूरा किया। तो श्रोताओं, वो जो पढ़ाई का असर है ना, वो दिखता है। इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा वहाँ पे अंडरवर्ल्ड के लोग हैं। अमिताभ बच्चन बिल्कुल उससे जुड़े हुए नहीं हैं, एक अलग अपनी प्रतिभा को लेकर चल रहे हैं। और जहाँ तक अभी हमारे साथ राधा जी जुड़ी और उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन, मतलब वो जो कला, असली जो एक लेखक वाचक कविता को पढ़ना और समझना साहित्य को, वो अमिताभ बच्चन में है। मधुशाला उनके पिता की लिखी हुई पुस्तक है, लेकिन उन्होंने उसे अपनी आवाज़ दी। और सबसे बड़ी बात, अमिताभ बच्चन इतने आवाज़ के धनी हैं कि कई फिल्मों में लोग उनको एज ए सिंगर भी लेते हैं और कभी कभी तो उनकी आवाज़ से प्रारंभ करते हैं फिल्म को, तो वे एक विशेष आवाज़ के मालिक हैं। और सबसे बड़ी बात, अपनी फिल्मों में कभी भी उन्होंने ऐसा रोल नहीं किया जो समाज में गलत संदेश देता हो। तो ये दिखाई देता है कि उस कलाकार के भीतर एक उद्देश्य है कि समाज में जो कुछ भी करूं उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है। इसीलिए देखिए, कोरोना वगैरह भी आया तो उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट मुफ्त में दिए ताकि लोग एजुकेट हो सके, और नारी शिक्षा को लेकर भी तो उसके वे पैसे वगैरह नहीं लेते हैं। लेकिन देखिए, उनकी फिल्मों में जो उनका रोल है उसके कारण उनको एंग्री यंग मैन का भी
1: किरदार मिला है
0: और खिताब भी मिला है। मतलब वो जहाँ भी अपना रोल करते हैं, एक दिखाई देता है कि अमिताभ बच्चन है,
1: बिल्कुल
0: ऐसे कोई गिरा हुआ एक्टर नहीं है
1: जी।
0: वो जहाँ खड़ा तड़ा ही दिखाई देगा
1: जी। पर इतने बड़े लेखक के बेटे होने के बावजूद इनका शुरुआती दौर भी काफी संघर्ष से भरा रहा।
0: शुरू में तो किसी ने कहा था तुम्हारी आवाज ही ठीक नहीं है।
1: और जो है, काफी फिल्में इनकी बैक टू बैक फ्लॉप हुई थी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। और अब देखिये, जीवन के इस पड़ाव में 80 साल के ऊपर हो गए है, तभी भी हम इन्हें आजकल हर सप्ताह, हर वीकेंड जो है कौन बनेगा करोड़पति शो में देखते हैं। और लोग इन्हें इतना पसंद करते हैं, जिस तरह से लोग इनसे मिलते हैं, दिखता है लोगों के मन में इनके प्रति जो सम्मान।
0: और एक बहुत अच्छा उसमें दिखाई दिया कि भारत के कभी कभी इतने छोटे या कोई महिला जो इतनी इंटेलिजेंट है वो उस मंच पर आ सके और हम जान सके कि भारत में कितनी प्रतिभाएं छिपी हुई है
1: जी।
0: तो एक उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड का एक लड़का जिसका इंटरव्यू या करोड़पति में वह आया था, अमिताभ बच्चन और उसकी बातचीत जब सुनते हैं तो वो अपने आप में बड़ा ही विशेष सा है।
1: हाँ।

0: अमिताभ बच्चन उसका उससे प्रश्न करते हैं, बातचीत करते हैं, बहुत गर्व महसूस होता है कि देश के पास एक इतना बड़ा कलाकार है।
1: बिल्कुल, और कला की बात करें तो आज अमिताभ बच्चन जी उस मोड़ पर हैं जहां पर न जाने हजारों लाखों लोगों को इन्होंने प्रेरित किया है एक्टिंग की दुनिया में आने के लिए। और जो है अमिताभ बच्चन जी कल जो है अपना जन्मदिन मनाएंगे, तो हमने सोचा कि आज अमिताभ बच्चन जी को हम अपने जो है प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और इनकी फिल्मों की बात करें तो शोले जो 1975 में आई थी, एक आइकॉनिक फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र के साथ ये नजर आए थे। वहीं दीवार, ये फिल्म जहां पर विजय ये नाम इनसे ऐसे जुड़ा कि अपने आप में हर एक पॉपुलर फिल्म में इनका नाम विजय ही हुआ करता था। शायद वो नाम इनके लिए लकी होगा, होते हैं ना कुछ। फिर अग्निपथ, ब्लैक जैसी फिल्में, पीकू जैसी फिल्में, मतलब क्या उम्र के साथ साथ इन्होंने ऐसे किरदार को चुना जो इन पर अच्छे भी लगते हैं और लोगों को एक संदेश भी देते हैं।
0: और पीकू जो उन्होंने दिखाया कि बड़े लोगों की एक छोटी सी प्रॉब्लम है लेकिन बड़ी भारी प्रॉब्लम
1: जी
0: है। और हम सब जानते हैं जिन घरों में बीमार बूढ़े होते हैं यही सब प्रॉब्लम से सब झेल रहे होते
1: बिल्कुल
0: हैं।

0: इतिहास के झरोकों से।
1: श्रोताओं, पुरस्कार तो पूछे ही मत, पद्मश्री उनको मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है और पद्म विभूषण मिल चुका है। इसी तरह से दादा साहब फाल्कर अवार्ड भी उनको मिल चुका है। वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के मेंबर भी रह चुके हैं 84 से 87 तक। तो अपने आप में एक लेजेंडरी, जिसको हम कहते हैं ना, एक विशेष व्यक्तित्व के धनी हैं। और फिर विशेष व्यक्तित्व ने आज तो पूरी दुनिया में अमिताभ बच्चन को सभी पहचानते हैं। मानो भारत के बॉलीवुड के आइकॉन है वे। मान लो किसी भी देश में किसी भी जगह पर यदि कोई उनकी फोटो देखेगा तो एकदम पहचान जाएगा। और ख़ास करके जो भारतीय भारत से बाहर रहते हैं वे अमिताभ बच्चन की सभी फिल्में देखना पसंद करते हैं। और कितनी ही फिल्में उनकी रशिया में या मान लीजिए फ्रेंच में डब हुई हैं जिन्हें लोग देखना पसंद करते हैं और उन्हें पूरा सम्मान भी मिला है। खास करके जहाँ पर अब प्रवासी भारतीय फिजी वगैरह में, वहाँ अमिताभ बच्चन की फिल्मों को बहुत सराहा जाता है।
2: बिल्कुल। और आज तो हमने हमारा इतिहास के झरस के कार्यक्रम जो है अमिताभ जी और रेखा जी पर रखा है। प्रोग्राम का टाइम भी खत्म होने आया, तो चलिए हमारे श्रोताओं को बता देते हैं कि रेखा और अमिताभ जी की जोड़ी अपने आप में ऐसी रही है जो काफी चर्चा में भी रही है।
1: आज भी है।
2: लोग उन्हें देखना एक साथ पसंद भी करते हैं।
1: यूट्यूब पर कोई प्रोग्राम हो तो स्पेशल कैमरामैन अमिताभ बच्चन और रेखा दोनों पर एक ही समय में शिफ्ट करता है ताकि पब्लिक देखे कि उनकी आंखों में भाव क्या है। मतलब कैमरामैन या रिपोर्टर का काम ही यही होता है कि वो ऐसे क्षणों को कैद करना चाहते हैं, लेकिन देखने वालों को आनंद आता है।
2: बिल्कुल। और रेखा जी और अमिताभ जी की बात करें तो दो अनजाने, आलाप, खून पसीना, गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, बलराम, चश्मे बद्दूर और सिलसिला जैसी फिल्मों में लोगों ने इनको बहुत ही पसंद किया है ना अलका जी।
1: बिल्कुल। तो एक गाना सुने,
2: तो चलिए एक छोटा सा गाना हो जाए।

0: रहे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम मिलते हैं, देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो
1: हेलो, नमस्ते सुमित जी और नमस्ते बहन जी।
2: नमस्ते आशा जी, क्या बात है, आपने तो हमारी आशा ही जगा दी 53 पर।
1: जी तो सबसे पहले तो आज का जो कार्यक्रम है कलाकारों पर, वो सच में ऐसा लग रहा है कि हम बॉलीवुड में है और अपन आंखों में हम अमिताभ जी को, रेखा जी को देख रहे हैं। और जैसे कहते हैं ना, किया है जिन्होंने अपने नाम कामयाबी का खिताब, वो है ओनली वन अमिताभ।
2: बिल्कुल सही बात है।
1: और जैसे अमिताभ जी के बारे में कह सकती हूँ कि सच में वो तो स्टार ऑफ द मिलियम है। और उन्होंने सहरसा में जो एक डायलॉग कहा था, रिश्ते में तो हम सबके बाप बच्चे हैं, तो सच में वो अदाकारी के क्षेत्र में दुनिया में अगर

0: तो सबके बाप ही हैं वो,
1: सबके बाप ही है क्योंकि उनके जैसे सब कलाकारों की अपनी अपनी एक अदा होती है, हाँ। वो अपने आवाज से, अपने नृत्य से, अपने डायलॉग से, अपने गायकी से भी पहचाने जाते हैं। पर अमिताभ जी में सब खूबियां हैं, अगर वो नृत्य हो, डायलॉग हो, या गाना भी हो, या कुछ कविता भी हो, तो सब में वो एवान है। और एक बात तो मैंने कहीं सुना था कि पहले शुरुआत में उनको डांस भी नहीं आता था।
0: डांस तो, क्या उनको से कहा गया था आपकी आवाज फिल्म लाइन के योग्य नहीं है, और आज सोचिए उनकी आवाज लोग लेते हैं।
1: जी, तो उन्होंने मन ही मन अपना गुरु बनाया भगवान दादा को। तो उनको देख कर उनसे सीख कर आज उनकी नृत्य, सभी उनके नृत्य से उनको भी पहचानते हैं। और उनके जो डांस स्टाइल होता है वो सिंपल होता है, ज्यादा उनको जानकी वो
0: लंबे है ना, लंबे हैं तो उनको स्टाइल एक अलग ही रखना पड़ता है,
1: अलग ही रखते
0: बाकी
1: हैं,
0: लोग तो उनसे छोटे दिखाई देते हैं ना
1: और जैसे उन्होंने अनेक अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ भी काम किया है। जैसे हम कभी नहीं कहते धर्मेंद्र अमिताभ जी, हम कहते हैं कौन, जय वीरू।
0: हाँ, बिल्कुल सही कह रही
1: हैं, कहते हैं हम कभी उनको अमिताभ और धर्मेंद्र जी नहीं कहते। उसी प्रकार राजेश खन्ना के हम कहते हैं बाबू मोशाई।
0: बिल्कुल, कुछ फिल्मों में ना बिल्कुल वो व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है, वही इतिहास ही बन जाता है वो।
1: और रेखा जी तो वो तो क्या कह सकती हूँ कि
0: सभ्य महिला बस, हाँ
1: जी,
0: भारत को प्रदर्शित करती हैं उनकी साड़ियाँ, उनका चलना, उनका क्लासिकल नृत्य, उनका बोलने का ढंग, एक सभ्यता को वो दिखाती हैं।
1: जी, और उनकी खूबसूरती भी, यानी कि वो हाँ। एक यानी कि वो ये कह सकते हैं कि उम्र भर ढल जाती है, पर नारियों को एक शिक्षा देती है कि हमें दिल से मजबूत जवान रहना चाहिए, ताकि हमारे जो सीरत के साथ साथ सूरत भी अच्छी बनी रहे।
0: बहुत सुंदर।
1: और नाना पाटेकर जी के बारे में मैं बस यही कहूंगी, पूरी श्रद्धा से श्रद्धांजलि देते हुए ये कहूंगी, उनके सारे फिल्मों को तो हम जिंदगी भर याद रखेंगे उनके डायलॉग के साथ साथ, और खासतौर पर क्रांतिवीर जैसे मूवी में उन्होंने काम किया था डिंपल कबड्डा जी के साथ
0: जी।
1: तो उनकी ये फिल्म ना वो जहन में दिमाग में बसती रहती है, क्योंकि बहुत बहुत अच्छी मूवी थी।
0: बहुत धन्यवाद आशा जी जुड़ने के लिए, और तीनों कलाकारों को याद करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, हमारे साथ आशा जी जुड़ी और उन्होंने तीनों कलाकारों को याद किया, और नाना पाटेकर को भी चलते चलते, क्योंकि नाना पाटेकर का तो अंदाज ही अलग था, और वे किसी से दबने वाले कलाकार नहीं थे, वे तो खुल कर कहते थे हम तो ठीक बात बोलेंगे तो खैर अमिताभ बच्चन तो जिसे कहते हैं कि एक अलग प्रतिभा वाला, सर्वोत्तमुखी प्रतिभा कह सकते हैं, वह टीवी पर भी आते हैं तो प्रसिद्ध हैं, फिल्म में जाते हैं तो भी, गीत गाते हैं तो भी, कविता बोलते हैं तो भी, और जीवन में भी देखिए ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर परिवार में कुछ, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी बहू को सम्मान दिया। तो ये जो सारी चीज़ें जो पारिवारिक वैल्यूज़ हैं वह भी हमको वहाँ पर दिखाई देती हैं, और उनके बेटे में देखिए वो पिता वाले संस्कार हमको दिखते हैं। तो श्रोताओं, ऐसे श्रेष्ठ एक्टर्स को इतिहास और हम कहाँ भुला सकते हैं।
2: बिल्कुल, और चलिए इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम लगभग खत्म होने को चला। अलका जी, अगले सप्ताह एक और कार्यक्रम के साथ आप लोगों से हम मिलेंगे, तो 3 बजे जो है आप सुन पाएंगे समाचार, और उसके बाद आज की चर्चा कार्यक्रम जो है रिब्रॉडकास्ट आप सुन पाएंगे, जो सवेरे 9 बजे चलाया गया था, और कल से नवरात्रि का आरम्भ हो रहा है, तो सभी को हम शुभकामनाएँ देंगे, और इस सुंदर गीत के साथ प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। इस गाने में जो है रेखा जी और अमिताभ जी दोनों ही नजर आए थे।
0: चलिए दोनों को सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ संध्या।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। फोमिलिता प्रोग्रेसिस के अधिकारियों ने आज प्रेस को संबोधित किया। दल के नेता पॉल बेरांजे ने देश में पानी की स्थिति को चिंताजनक बताया। उन्होंने जल्द से जल्द नियमित जलापूर्ति के लिए समाधान लागू किए जाने और माहोवाकुआ जलाशय के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन किए जाने की मांग की। साथ ही शागस मामले और नेशनल क्राइम एजेंसी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। प्लाजा रोजिल में आज ब्रेस्ट और सर्विकल कैंसर की स्क्रीनिंग का एक अभियान चलाया गया। हेल्थ केयर लीडर्स नेटवर्क अफ्रीका की ये पहल निःशुल्क रही। मकसद रहा महिलाओं में बचाव के तौर पर अर्ली स्क्रीनिंग की आदत उजागर करना, क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार कुछ कैंसर के मामलों का जल्दी पता चलने से इलाज के बेहतर नतीजे हो सकते हैं। काथोबोन नगर पालिका ने इस महीने की शुरुआत से शहर भर में कूड़ा उठाने का एक वृहद अभियान शुरू किया है। इसके लिए 1.2 मिलियन रुपए लगाए गए हैं। 10 लोरियां कार्यरत की गई हैं और करीब 60 सफाई कर्मचारियों को इस अभियान में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, भारत की राजधानी दिल्ली में आज वृहद प्रदर्शनों के लिए जंतर मंतर में इकट्ठा हुए लोगों को रोकने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा है। 500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये प्रदर्शन जेंजीज द्वारा शुरू हो रहे हैं। वे इलेक्टोरल कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त। आगे आ दीजिए, नमस्कार।
2: RM3 Radio.

0: डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली ने क्या खूब कहा था कि एक वकील की गलती फाइलों में दब जाती है, एक इंजीनियर की गलती दीवार के ईंट में छिप जाती है, एक डॉक्टर की गलती कब्रिस्तान में दफन हो जाती है, लेकिन एक शिक्षक की गलती सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन में झलकती है। इसीलिए ए मीडियोक टीचर टेल्स, ए गुड टीचर एक्सप्लेन्स, ए सुपीरियर टीचर डिमॉन्स्ट्रेट, बट ए ग्रेट टीचर इंस्पायर्स। नमस्ते और प्रणाम। आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि 5 अक्टूबर 2026 को हम लोगों ने मनाया था शिक्षक दिवस, जहां पर शिक्षकों के प्रति सम्मान और शुभकामनाएं भी प्रकट की गई थी। इसके चलते बहुत सारे छात्रों ने अपने शिक्षकों, गुरुजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी, और इसी विषय पर आज हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे किस प्रकार से शिक्षक आज के समय में, यानी कि समकालीन संदर्भ में, जेन जी के इस अवधि में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है श्री अरविंद शर्मा भजन, आप सीनियर लेक्चरर तत्वाद्य विभाग के अध्यक्ष महात्मा गांधी संस्थान से हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सुश्री दिया हंसिनी भोबुति, आप एक कोऑर्डिनेटर हैं, परंतु इससे पहले 15 वर्षों तक आप शिक्षण के क्षेत्र में रही और बहुत कार्य की, और आप दोनों का हम स्वागत करते हैं आज की चर्चा कार्यक्रम। नमस्ते अरविंद, नमस्ते हंसिनी। सो आज का जो विषय है अपने आप में बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि हाल ही में हम लोगों ने शिक्षक दिवस मनाया। मेरे बहुत सारे जो सहयोगी हैं उन लोगों ने शिक्षक दिवस पर बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तुत किए आज की चर्चा के ही मंच पर, लेकिन आज हम थोड़ा सा अलग देखेंगे, एक अलग स्थिति को भांपने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आज के समय में जो शिक्षक हैं, जो लेक्चरर हैं, जो टीचर हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, किन किन चुनौतियां यानी कि चैलेंजेस का आप लोग फेस कर रही है, एनकाउंटर कर रही हैं। सो सबसे पहले श्री अरविंद जी, आप हमें ये बता सकते हैं कि आजकल जब हम शिक्षकों के बारे में बात करते हैं, क्या आपको लगता है उनका जो रोल है, उनकी जो भूमिका है, उसमें एक बदलाव है?
1: सबसे पहले नमस्ते अभी। धन्यवाद आपने हम

0: को इस मंच पर बुलाया शिक्षक दिवस पर बात करने के लिए। देखिए, शिक्षण एक ऐसी ऐसा क्षेत्र है जो जैसे प्राचीन काल से अभी तक बहुत चेंज हुआ है। जैसे पहले होते थे गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल सिस्टम होते थे, हमने टीवी में भी देखा होगा, और आते आते अभी अभी जो है हमारे शिक्षा प्रणाली में इंस्टीट्यूशनल टीचिंग होते हैं। और चूंकि मैं कला के शिक्षण से जुड़ा हूँ, तो कला के शिक्षण में मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत सारे बदलाव आए हैं, और जो शिक्षक से जो उपेक्षा होती थी वो उसमें भी बदलाव आया हुआ है। और जो अगर आप आज आधुनिक काल में जो शिक्षण कला शिक्षण के बारे में अगर आप देखें, तो अभी इंस्टीट्यूशनल टीचिंग के चलते बहुत बदलाव आया है। क्योंकि पहले जो होता था, गुरु जो होते थे गुरु शिष्य परंपरा में, गुरु ही एकमात्र सोत्र था ज्ञान का। तो अभी ऐसा नहीं है। अभी जो है आधुनिक जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं, उससे बच्चों को पहले ही बहुत सारे ज्ञान मिल जाते हैं कक्षा में आने से पहले
1: जी।
0: तो थोड़ा हमको जो है एक फैसिलिटेटर बनना पड़ता है, जो उनको जैसे करते हैं एम्पावर कर सके कि अपना चयन खुद कर सके कि किस सोर्स से सही ज्ञान मिलेगा और किसको नहीं सुनना है। तो मैं संक्षेप में यही कहना चाहूँगा कि अभी जो शिक्षण में जो बदलाव आया है शिक्षक के रूप में, तो इट्स मोर ऑफ ए फैसिलिटेटर और एक गाइड की तरह से हम काम करते हैं, पर और भी हैं, बात करेंगे।
1: तो जब हम अरविंद, जब हम लोग एडुकेटर शब्द को ठीक से डिक्शनरी में है, मैं इंटरनेट के बारे में नहीं कर रहा हूँ, डिक्शनरी में जब हम एडुकेटर शब्द की जो परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन जो है, जब हम वहाँ पर देखते हैं, तो जैसे कि आपने कहा वही है, मीन्स कि वो टीचिंग एंड लर्निंग को फैसिलिटेट करती है, गाइड करती है। टीचिंग तो है वहाँ पर, लेकिन वो फैसिलिटेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा है। तो आपके हिसाब से आप 15 वर्षों तक हंसिनी टीचिंग के क्षेत्र में है, और अभी तक मतलब आप इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं लेकिन एक अलग पद में, अब तो आपको क्या लगता है कि जो रोल है टीचर की, जो रोल है उसमें बदलाव आया है?
2: जेनरेशन आए या ना आए, मुझे लगता है कि रोल ऑफ ए टीचर वही रहेगा। आपको प्यार देना है, सिखाना है, नॉलेज शेयर करना है, फर्क बस यही है। मान लो जब मैं स्टूडेंट थी तो मोबाइल फ़ोन नहीं था, टिकटॉक नहीं था, हमें पता नहीं था कि क्या हो रहा है। जैसे डॉक्टर बिसिसो ने कहा, आजकल के बच्चे, उन्हें पता चल जाता है कि कल क्या हुआ, किस देश में क्या हुआ। और जब हम क्लास में जाते हैं तो बच्चे वही चर्चा से शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है टीचर को, ये टॉपिक बन जाता है, एक डिस्कशन बन जाता है। आप उस चर्चे के द्वारा उन्हें बता सकते हैं कि क्या सही है, क्या नहीं है, ये करना है, ये मत करना है। और जब वो देखते हैं कि आउटकम क्या हुआ, तब ज़्यादा सीख मिलती है।
1: आप एक टीचर थे, लेकिन टीचर होने से पहले आप एक छात्र थी। तो जब उस समय आप एक छात्र के रूप में जब आप अपने जो गुरुजन को देखते थे, उसका एक अलग रूप था, उसका अलग भूमिका थी, अलग रोल थी। क्या आज के समय में अगर आप एक कंपैरिजन करेंगे, इस तरह का है कुछ?
2: है, बहुत स्टूडेंट्स कि जब रेस्पेक्ट मिलती है उन स्टूडेंट्स के द्वारा, तो मालूम होता है कि है। लेकिन डिफरेंस यही है कि हम बहुत डरते थे अपने टीचर से, लेकिन अब ये डर कम हो गई है। और टीचर एक दोस्त की तरह उन स्टूडेंट्स के पास जाना चाहिए
1: जी।
2: ताकि उनको अपने तरफ खींच सके, बिठा सके, बात कर सके।
1: और अरविंद जी, आप

0: अलग क्षेत्र पढ़ाई में ही भी हैं, लेकिन आप मच मोर प्रैक्टिकल पर ज़्यादा हैं। तो अब जब आप एक छात्र थे उस ज़माने में, आपकी जो लेक्चरर या फिर आपके जो टीचर थे उस ज़माने में, जब वे सितार सिखाते थे, उस ज़माने की उनकी जो भूमिका थी, और आज के समय यू एज ए लेक्चरर, एक लेक्चरर होने के नाते आपकी जो भूमिका है, आपको लगता है उसमें ज़्यादा डिफरेंस है या फिर थोड़ा सा चेंजेस आए हैं?
1: सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजनों को आभार प्रकट करना चाहूँगा। सबसे पहले गुरुजी जयराज संतोखी जी, जिनसे मैंने सितार सीखना शुरू किया, उनके बाद डॉक्टर देवानंद राम खिलावन जी, और मेरे भारत में जो टीचर थे प्रोफेसर श्रीमती अनुपम महाजन जी। तो इन लोगों से जब मैंने सीखा तो जैसे कि हंसिनी ने कहा कि बहुत प्यार मिला। किसी भी छात्र के लिए अपने गुरु का आदर सम्मान और उनसे प्रेम करना आवश्यक है, क्योंकि अगर ये प्रेम जो एलिमेंट है वो नहीं होता होगा तो मतलब शिक्षण के ट्रांसमिशन में थोड़ी कमी रह जाती है, वो पूर्ण रूप से हो नहीं पाती। तो ये जो कंडीशंस हैं छात्र में होनी चाहिए, और मैं भी जब छात्र था तो मेरे शिक्षकों ने मुझे बहुत प्यार से, बहुत केयरिंगली सारा कुछ सिखाया, और मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने ऐसे गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की कि मुझे मतलब जो भी सीखना था अच्छे से सिखाया, और मैंने भी समझ के, और वैसे परीक्षा तो होते ही हैं, उनमें भी थोड़ा उत्तीर्ण हुआ। अब जब मेरी बारी आई सिखाने के लिए तो मुझे बस उनका जो सिखाया हुआ पत्ता उस पर चलना था। मेरा भी बहुत ही ध्यान जाता है कि बच्चों को समझाने में और उनको समझने में, क्योंकि कला ऐसा होता है ना, कला जो सीखते हैं उससे सिर्फ इंटेलेक्ट नहीं होता, उसमें इमोशन भी आता है, उसमें कोई कोई टैलेंट भी होते हैं। तो आपको ये सब ध्यान में रख के पहचानना पड़ता है, और उस हिसाब से सब हर एक छात्र को इंडिविजुअल अटेंशन देना पड़ता है, क्योंकि सब के लिए ये क्षेत्र समान नहीं होता। तो इस हिसाब से जो मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया उस पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी सफलता प्राप्त हुई नहीं है, पर कोशिश जारी है, और मैं भी जो सीखा है अगले जनरेशन को पास ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: वैसे तो हम कहना चाहेंगे अरविंद थोड़ा ही उत्तीर्ण नहीं हुआ है, वो मॉरिशस को रिप्रेजेंट करने गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट बन करके वापस आए थे, इसलिए आज आप सीनियर लेक्चरर हैं सितार के क्षेत्र में, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। सो हंसिनी, अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज बहुत ही चर्चे में है, चाहे छोटे बच्चे 7-5 साल के हो या फिर जो बच्चे यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, 5 साल से लेकर के 25 साल के जो दरमियान के जो जितने सारे जो अलग अलग एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ChatGPT, Gemini AI, और साथ ही साथ Claude AI, और पता नहीं और AI के कितने रूप हैं, वे इनके रग रग से वाकिफ हैं, उनकी उंगलियों से लेकर के नाक आंख सब वे इसी से उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। अब आप मुझे बताइए, आज के समय में एक शिक्षक ऐसी, आपको लगता है कि ये AI एक वरदान है जिसे हम कहते हैं ब्लेसिंग, या फिर एक चुनौती चैलेंज है?
2: तो मेरे लिए एक वरदान ही है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग, बच्चे अकेले हैं, उनके पास कोई नहीं है बात करने को
0: जी।
2: तो AI एक सहारा बन जाता है, आपको सुनता है, आपकी आपको लाड़ प्यार भी देता है, तो एक वरदान ही है। लेकिन बच्चे यूज़ करेंगे ही करेंगे,
0: बिल्कुल।
2: लेकिन कक्षा में मेरी एक प्रिंसिपल है, जब एक होमवर्क दिया गया है तो मैं उसको पूछूंगी कि तुमने कैसे ये जवाब मिला तुम्हें। तो आप वही से अगर बच्चे आपको जवाब नहीं दे पा

0: आएंगे, तो आपको उसको बोलना है कि देखो AI यूज़ किया लेकिन तुम्हें जवाब या वो क्रिटिकल थिंकिंग ये आया ही नहीं उसके
1: बिल्कुल
0: बाद. तो बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, क्या गलत आउटकम हुआ उससे सीखते हैं. और
1: बिल्कुल
0: वही आपको उसको बोलना है कि AI यूज़ करो लेकिन उस आंसर को एनालाइज करो,
1: बिल्कुल
0: समझो उसको, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में वो AI नहीं होगा. जैसे
1: बिल्कुल
0: कि टीचर ने तुम्हें पूछा जवाब क्यों लिखा, तुम्हें पता नहीं हुआ, तो वैसे ही होगा एग्ज़ाम सेंटर में, बर्बादी ही बर्बादी है.
1: बिल्कुल
0: तो मुझे लगता है कि हर चीज़ का पॉजिटिव निगेटिव है, आपको एक बैलेंस लाना चाहिए हर चीज़ों में. तो AI उसको सही तरीके से यूज़ करोगे तो वरदान ही वरदान है.
1: और अरविंद, आपके क्षेत्र, खासकर म्यूजिक के एक एक क्षेत्र में, आप सितार वादन में को बढ़ावा देने की दिशा में आप बहुत अच्छी तरह के काम कर रही हैं, तो वहां पर AI की क्या भूमिका है, उनका क्या रोल है वहां पर?
2: देखिए, म्यूज़िक का जो फील्ड है वहाँ पर, कैसे आपने कहा कि AI चारों ओर है,
1: बिल्कुल
2: तो AI आ चुका है। पर मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, कि हम AI से बच नहीं सकते
1: बिल्कुल
2: और बचना भी नहीं चाहिए। AI को अपनाना चाहिए, पूरे दिल से अपनाना चाहिए। पर जैसे कि हंसिनी जी ने कहा कि अपना क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग नहीं खोना चाहिए, क्योंकि AI जो है वो एक मशीन है और उसमें जो भी डाला गया है वो उसी को उगलेगा, और जो भी डाला गया है मनुष्यों ने ही डाला है।
1: बिल्कुल
2: तो इस हिसाब से मनुष्य को हमेशा AI का सहारा लेना चाहिए, पर अपनी जो सृजनात्मकता है वो नहीं खोना चाहिए। और मैं हमेशा अपने छात्रों को भी कहता हूँ कि कोई कोई बुराई नहीं है AI यूज़ करने में, पर जब भी कोई, वैसे मैंने एक कहीं सुना था, मैंने इसको कभी किया नहीं, पर किसी शिक्षक ने ही मुझे बताया था कि वो क्या करते हैं, जब भी कोई असाइनमेंट देते हैं वो कहते हैं स्टूडेंट्स को, जाके AI में इस असाइनमेंट को करो, और उस AI का जो जवाब मिला है उस पर क्रिटिकल एनालिसिस करो। तो जब असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो जो AI ने जनरेट किया और उनकी जो क्रिटिकल एनालिसिस है, दोनों सबमिट करना पड़ता है।
1: अच्छा
2: तो इस हिसाब से थोड़ा कंट्रोल भी रहता है कि बच्चे ने AI भी यूज कर लिया और अपनी जो क्रिएटिविटी है उस पर उसको भी लागू कर दिया। तो इस हिसाब से मुझे लगता है इस तरह के जो क्रिएटिव मेथड है हमको बच्चों के लिए यूज करना पड़ता है, क्योंकि जैसे नहीं हो सकता, क्योंकि कैसे लोग होते हैं, म्यूजिक भी AI से जनरेट कर लेते हैं और वो दिख जाता है।
1: बिल्कुल
2: वैसे जो जो हम सुनने वाले हैं संगीत के, तो कोई भी म्यूजिक AI से जो जेनरेट होता है उन हमको पता चल जाता है। तो इस हिसाब से AI यूज करते हैं और फिर भी अपनी क्रिएटिव थिंकिंग उसमें डालते हैं।
1: अरविंद जी, आप हमें ये बताइए, मैं आपसे एक व्यक्तिगत राय जानना चाहूँगा। जब भी आप एक कंपोजिशन कर रही हैं सितार का, और बहुत ही शिद्दत के साथ, प्यार, इसमें आपका फुल सर्वसमर्पण जिसे हम कहते हैं, आप करती हैं, मान करके चलिए मालकों से जुड़े आपने एक बहुत ही सुंदर राग आपने खुद, मतलब उसको बजाया है, और बजाने के बाद आपको एक अंदर से एक आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति हुई,
2: जी।
1: और वही जो मालकोंस के जो राग है आपने AI के माध्यम से सुना, तो एज ए लेक्चरर आपको कैसा महसूस होता है, और किस प्रकार से आप इन दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव वो करते हैं, क्या उस समय आपका क्या रिएक्शन होता है जब आप खुद के जो कंपोजिशन है आपने किया, इसमें आपकी सब कुछ है, आप जो राग मतलब है, और वही राग आपने AI वर्जन में सुना?
3: अच्छा,
1: ये व्यक्तिगत राग मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जब मतलब शिक्षक कहते हैं कि वहाँ पर ओरिजिनलिटी की कमी है,

0: है, क्रिएटिविटी की कमी है, मतलब कैसे है आपका?
1: नहीं देखिए, एआई से जो जनरेटेड म्यूजिक है वो काफ़ी सुंदर म्यूजिक होते हैं, मैंने सुना है, मैंने देखा है कि एआई से जो जनरेटेड म्यूजिक है वेरी अपीलिंग। ऐसा नहीं कहूँगा कि जो भी एआई करता है बुरा होता है, पर हाँ देखिए मैं तो कंपैरिजन नहीं करूँगा, पर जैसे आपने कहा कि अगर आपने खुद एक धुन बनाई तो आपके जो ज्ञान है उस राग, जैसे कि आप राग मार्कोस बोल रहे हैं, तो उस राग के बारे में जो आपकी आपका ज्ञान है और आपकी क्या पर्सपेक्टिव है उस राग को लेकर, तो वो उसमें आप डालेंगे और संतुष्टि होती है कि हमने बनाया, बट वी ऑलवेज फील रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो जो हमने धुन बनाया उसको जैसे अभी बनाया, तो एक साल के बाद वही धुन सुनेंगे तो अच्छा ये थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। जब एआई बनाता है तो वो इट्स फाइनल, एआई अपने को सुधार नहीं सकता
0: बिल्कुल।
1: पर क्या होता है अगर हम एआई से कुछ म्यूजिक बनाएं, कैसे मैंने असाइनमेंट के बारे में कहा, उस म्यूजिक को लेकर उसको अपनी क्रिएटिविटी द्वारा उसको सुधार सकते हैं, वी कैन एनहांस द म्यूजिक जैसे बोलते हैं एआई द्वारा जो रचना हुई है तो इस हिसाब से कर सकते हैं। पर हाँ, एआई इज टॉक ऑफ द टाउन, तो बहुत लोग इसको यूज कर रहे हैं, पर एक शब्द है एआई को यूज करने के लिए, मैं जो भी यूज करते हैं, यू हैव टू यूज इट रेस्पॉन्सिबली। एआई शुड नॉट रिप्लेस एनीबॉडी एल्स, एनी ह्यूमन, जो चाहे शिक्षक हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे कलाकार हो, चाहे पेंटर हो, चाहे डांसर हो, एआई इनको नहीं रिप्लेस कर सकता
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जो इंसान अपने से प्रोड्यूस कर सकता है वो उसका भाव ही अलग होता है।
0: भाव के बारे में अभी आपने कहा, तो वो भाव एआई में महसूस होता है? जैसे कि जब हम एक सितार के जो धागे होते हैं, जब वो पुलिंग करते हैं तो हमारे जो हृदय की जो तंत्रियां हैं उसको झंकृत कर देते हैं, एक अलग तरह का एक प्रभाव महसूस होने लगता है। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कंपोजिशन किए गए वही राग, वो भाव आता है वहाँ पर?
1: देखिए अभी तक तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा रचित कोई भी राग बेस्ड धुन नहीं सुना है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि अभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादातर वेस्टर्न म्यूजिक के जो साइट्स हैं उससे, अपने जो सोर्सेज हैं उससे लेता है, पर एआई गज़ल भी कंपोज कर सकता है, भजन भी कंपोज कर सकता है, पर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक तक तो अभी नहीं पहुंचा, पता नहीं आगे क्या हो सकता है। तो हाँ, अगर कोई धुन बना लिया, कोई भजन बना लिया, कोई गज़ल बना लिया, तो जैसे कि मैंने कहा एआई जो लेता है वो इंसानों के ही द्वारा बनाया हुआ होता है, तो सितार म्यूजिक स्पेसिफिकली एआई नहीं बना सकता
0: बिल्कुल,
1: पर एक गीत बना सकता है जिसमें सितार के इंटरल्यूड्स हो सकते हैं, तो इस हिसाब से बना सकता है। पर अगर आप कोई भी रोबोट को सितार बजवाएंगे और कोई भी मनुष्य को सितार बजवाएंगे तो फर्क तो होगा ही।
0: हंसनी, आपसे एक एआई को लेकर के ही एक अलग प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। आप अलग अलग कॉलेजेस में विजिट करने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई ऐसे केसेस मिलते हैं जहाँ पर बच्चे लोग प्रिंसिपल या फिर रेक्टर या फिर जो डेप्यूटी रेक्टर हैं या फिर टीचर वहाँ के कहते हैं कि उन्होंने एआई का प्रयोग किया और मैं अपने आप को टक के मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ होता है?
2: नहीं, ऐसा नहीं हुआ अब तक, लेकिन क्योंकि मुझे विश्वास है कि सारे टीचर रेक्टर उनका एक तरीका होता है इस चीज़ से डील करने का।
0: बिल्कुल,
2: और यही होता है कि जैसे सर ने कहा कि एक टीचर ने अपना एक तरीका सोचा कि

0: कैसे उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काबू में कर सके,
1: स्ट्रेटेजी अपनाया.
0: तो वैसे ही जैसे मैं करती हूँ, मैं प्रश्न पूछती हूँ, ये मेरे लिए वर्क्स करता है. तो आई एम श्योर सारे टीचर उनका एक अपना तरीका होता है.
1: जी हाँ बिल्कुल. आज हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो शिक्षक हैं, जो पेडागोजिकल चैलेंजेस हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें कौन सी भूमिका है, और हम बात कर रहे हैं कि इन चुनौतियों का किस तरह से सामना किया जा सके. हमारे साथ इस वक्त सुश्री हंसिनी और श्री अरविंद जी हैं, और हम बात कर रहे हैं आज की चर्चा कार्यक्रम में. हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर से हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे.

0: आज की चर्चा कार्यक्रम इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। हमारा जो विषय है वो समकालीन संदर्भ, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही प्रासंगिक है। किस प्रकार से आज के जो छात्र हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कैसे मैं कहूँगा उनके चक्र में फंस गए हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं एक नई गति के साथ, और किस प्रकार से जो टीचर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, वे इनका सामना कर रही है, और ये एक चुनौती है या फिर एक वरदान है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं महात्मा गांधी संस्थान के सीनियर लेक्चरर श्री अरविंद भजन शर्मा, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एक कोऑर्डिनेटर जिनका नाम है सुश्री हंसिनी दिया। सो हंसिनी, अब आपसे एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा रिगार्डिंग मेहनत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बच्चों की जो मेहनत की जो डिग्री है वो थोड़ा सा कम हो गया है?
1: नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि जब बच्चे अपनी मोबाइल फ़ोन में एक होमवर्क का रिसर्च करेगा, चाहे एआई में भी हो, तो एक मेहनत ही है, उसने पहला पड़ाव किया है, तो मेहनत है। और एक बच्चे ने मुझे कहा था कि उसको सीखना था फ्रेंच, तो उसने चैट जीपीटी को कहा, तो चैट जीपीटी ने कहा कि मैं रोज तुम्हें ये कहूँगा करने को, तुम करो मेरे साथ। तो ये मेहनत भी थी और सीख भी हुआ था, तो मुझे लगता है कि ये एक मेहनत कम नहीं हुआ।
0: बिल्कुल
1: हाँ, वहाँ पर ही है, और मैं कहूँगी कि सहारा ज्यादा
0: मिल गया,
1: और आपको क्लैरिटी अभी के अभी मिल जाती है, क्योंकि जब हम स्टूडेंट्स थे तो हमें वेट करना पड़ता था कि हम कब जाएंगे स्कूल, तब ये पता चलेगा कि हम सही है या नहीं है। तो एआई घर पर आपको बता ही देगा और आपकी स्ट्रेस कम हो जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और आपके लिए श्री अरविंद जी, मेहनत आपको लगता है, जनरल मैं बता रहा हूँ, आपको लगता है कम हुआ या फिर मतलब अभी तक सेम ही है?
2: देखिए, मेहनत को मापना थोड़ा मुश्किल है।
0: बिल्कुल।
2: पर सभी अपने अपने हिसाब से मेहनत कर ही रहे हैं, चाहे शिक्षक हो या विद्यार्थी हो। तो अब कैसे, जैसे बोलते हैं यथाशक्ति, क्योंकि देखिए कोई भी छात्र जब मेहनत करने की सोचता है तो सबसे पहले सोचना चाहिए कि वो उस मेहनत का परिणाम क्या चाहता है।
0: बिल्कुल
2: ठीक है। और हमारे क्षेत्र में जो होता है, देखिए जब भी मैं क्लास करता हूँ तो मैं हमेशा बच्चों से ये कहता हूँ कि अगर तुम कक्षा के बाद घर जब जाते हो और घर पर जैसे कि अभ्यास नहीं कर रहे हो और मेरे बारे में सोचकर तुम्हें गिल्टी फील होती है, तो मुझे लगता है कि मेरा शिक्षण सफल हुआ। क्योंकि देखिए बच्चों को, कैसे आपने शुरू में कहा कि ए टीचर इंस्पायर्स, तो मैं यही मेरी प्रयत्न, मेरा प्रयत्न रहता है कि मैं बच्चों को मेरे ना होने पर भी इंस्पायर करो। क्योंकि देखिए मेहनत तो बच्चे करते हैं, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो रेगुलर प्रैक्टिस मांगता है। वैसे भी किसी भी क्षेत्र में भी ये होता है, पर क्योंकि सितार वादन, तबला वादन, नर्तन, ये सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, तो हमको रेगुलरली इसकी अभ्यास करनी चाहिए। तो जब हम कक्षा समाप्त करते हैं तो बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि घर जाके इतने घंटे प्रैक्टिस करो, इतने इस टेक्निक को सुधारो, ये सब करो। पर अब देखिए बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं

0: अभ्यास करते हैं तो वो अपने जो जो उनको प्राप्त करना होता है, क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं दुर्भाग्यवश सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए आते हैं, क्योंकि बहुत से क्षेत्र में ऐसा होता है, केवल संगीत में नहीं, सभी, क्योंकि उनको बस सर्टिफिकेट मिल जाए, एग्जाम पास हो जाए तो बस
1: उनको जीते नहीं है,
0: हाँ, तो उस वो उस हिसाब से मेहनत करते हैं ताकि एग्जाम में अच्छा कर सकें और अच्छा परिणाम आए, सर्टिफिकेट मिल जाए, फिर जो भी देखा जाएगा। पर कुछ बच्चे जो सिंसियरली आते हैं, उनको संगीत सीखना होता है, उनको अच्छा बजाना होता है, अच्छा गाना होता है, तो उनकी जो मेहनत होती है वो अलग होती है। वो शिक्षक को सुनते हैं, शिक्षक की बातें को ग्रहण करते हैं और उस पर घर जाकर अमल करते हैं, तो इस हिसाब से उनकी मेहनत अलग होती है। तो सब सभी हर हिसाब से सभी की मेहनत होती है, पर अंततः ये होता है कि वो उस मेहनत के उपरांत चाहते क्या है, बस ये मैं समझता हूँ।
1: क्योंकि मतलब एक एकेडमिक सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर होमवर्क करना ज़्यादा होता है, लेकिन आपके क्षेत्र में अभ्यास रियाज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप को कैसे पता चल जाता है कि हाँ, इसने तो बहुत रियाज लगातार उन्होंने किया है, यहाँ पर थोड़ी सी कमी आ रही है, कैसे कैसे आपको पता चल जाता है उनके परफॉर्मेंस के माध्यम से?
0: हाँ, ये वैसे ये अनुभव से भी आता है। तो अभी काफ़ी समय से मैं शिक्षण में हूँ, तो वैसे जब स्टूडेंट्स कक्षा में आते हैं तो जब भी मैं उनको जो पिछली बार किया था फिर से बजाने को कहता हूँ, तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि उन्होंने
1: रियाज किया
0: है या नहीं। तो और फिर अवश्य जब वो बजाते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। हो सकता है कि उन्होंने किया हो पर जितना चाहिए था उतना नहीं किया होगा, तो उस हिसाब से मुझे पता चल जाता है। पर इट्स ओके, सबकी अपनी अपनी कमज़ोरी होती है। देखिए, उनको सिर्फ यही नहीं, हमारे भी 10 चीज़ें होती हैं करने के लिए। तो बच्चों को बस उनको प्रोत्साहन देना चाहिए और इट्स ए लॉन्ग जर्नी, ठीक है। तो इस हिसाब से बच्चों को भी समझाना चाहिए कि देखिए, ये ओवरनाइट नहीं है, इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है, जो पाउडर लगाया कॉफ़ी बन गया। मेहनत तो है, मेहनत करनी चाहिए। और देखिए, दो शब्द हैं, मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन क्या होता है, वो आप मोटिवेट हो जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है तो आप भी खत्म हो जाते हैं, मतलब वो प्रैक्टिस करने की इच्छा। पर जो कंसिस्टेंसी है, वो It doesn't depends on anything apart from doing good.
1: Exactly.
0: तो कंसिस्टेंसी होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, बिना किसी चीज़ की उपेक्षा किए। तो कंसिस्टेंट जो होते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं, और उस पर अगर वो टैलेंटेड हो तो, क्योंकि बोलते हैं ना, टैलेंट प्लस ट्रेनिंग इज अ वेरी सुपर कॉम्बिनेशन। तो इस हिसाब से मेहनत तो सभी कर रहे हैं, बस उनको उस मेहनत से चाहिए क्या, इस हिसाब से करते हैं।
1: एक और शब्द है इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, कंसिस्टेंसी के साथ साथ वो होना चाहिए डिसिप्लिन। अगर इंसान डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी इन दोनों वैल्यूज़ को अपने ज़िंदगी में उतार लें, तो मोटिवेशन हो या ना हो, उनको वो करना होगा ही। हंसनी, आपको लगता है अब हम लोग उतरते हैं डिसिप्लिन के क्षेत्र में, आप अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं, आप मैं नहीं कहूँगा कंपैरेटिव करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि हर एक स्कूल का अपना एक कल्चर है, तो डिसिप्लिन का जो लेवल है वो अलग अलग स्कूल में कैसा है?
2: हाँ, हर स्कूल का एक कल्चर है और उस कल्चर के हिसाब से डिसिप्लिन की अलग ही होगी हर चीज़, लेकिन ये डिपेंड करता है। मैं जब टीचर होती हूँ और फॉर्म टीचर भी थी, तो जब पहले दिन मैं जाती थी कक्षा में, तो मेरी एक रूल होती थी, आपको बोनजोर बोलना चाहिए। और जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली ग्रेड 7, तो उनका ज़्यादा ग्रूमिंग करना चाहिए। तो मैं हमेशा रोज़ प्रेयर के बाद उनको बोलती थी कि कैसे इंग्लिश

0: इंग्लिश में बोजो बोलना चाहिए. तो रोज लाइक रिहर्स करते थे, कंसिस्टेंसी थी, डिसिप्लिन थी उस हिसाब से. तो बच्चे को पता चल जाता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो एक आदत बन जाती है, एक डिसिप्लिन्ड वन. तो वैसे ही हर टीचर का अपने कक्षा, अपने स्टूडेंट्स के द्वारा अपनी अपनी एक डिसिप्लिन की गाइडलाइंस होती है.
1: अब श्री अरविंद जी, आप हमें ये बताइए कि आपके क्षेत्र में, म्यूजिक में, किस तरह से, कौन कौन से आप स्ट्रैटेजीज, शिक्षण विधि आप अपनाते हैं जहाँ पर आप अपने अपनी कक्षा को, अपने क्लास को और ज़्यादा एंथुजियास्टिक बनाते हैं. वैसे तो म्यूज़िक के जो क्लास है वो एंथुजियास्टिक रहते ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो छात्र हैं आज एक डोंट वॉन्ट टू डू वाली जो मूड में आते हैं, अब आपको उन लोगों को इंस्पायर करना पड़ता है. तो वहाँ पर कौन सी स्ट्रैटेजी अपना करके उनको प्रेरणा आप प्रदान करते हैं?
2: देखिए, जब बच्चे जब संगीत की कक्षा में आते हैं तो अगर बिगिनर्स की बात करें तो मैं समझता हूँ वो, जैसे कि हंसिनी जी ने कहा, वो अब एक ब्लैंक शीट होते हैं. आपको उनको ग्रूम करना पड़ता है. पर मेरे कक्षा में जो जो जो स्टूडेंट्स आते हैं वो टर्शियरी लेवल के होते हैं, डिप्लोमा बीए एमए करने वाले छात्र होते हैं. तो उन उनको पहले से ही काफ़ी सारा नॉलेज हो जाता होता है. तो जब आते हैं तो मैं देखिए, वी केम टू फंडामेंटल्स. ओके, जो बेसिक्स होते हैं वो क्योंकि जो आधार बोलते हैं ना, तो किसी भी विषय के बारे में वो बेसिक्स को कैसे बोलते हैं, मास्टर करना बहुत ज़रूरी होता है. तो जब भी मुझे लगता है कि क्लास थोड़ा मतलब स्टूडेंट्स आर नॉट मच मोटिवेटेड, तो मैं आई गो बैक टू बेसिक्स.
1: अच्छा.
2: मैं उनको फिर से वो जो चीज़ें शुरू में सिखाए होंगे उनके टीचर ने जब वो बिगिनर्स कोर्स करते हैं, तो उसको फिर से दोहराता हूँ. क्योंकि पहले तो उनको ये पहले से ही आता है और मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत दिनों से इसका अभ्यास भी नहीं किया होगा. क्योंकि जैसे जैसे बढ़ते हैं जो पीछे चीज़ें छूट जाती हैं. तो आई डू दैट और बच्चों को भी अच्छा लगता है कि अरे ये तो बहुत दिनों से नहीं किया. तो जब वो उसको बजाने लगते हैं आसानी से आ जाता है और बजा भी पा रहे हैं,
1: कॉन्फिडेंस आ जाता है.
2: फिर धीरे धीरे उनको मैं पुल अप करके जो कक्षा है उस हिसाब से उनको वहाँ तक ले जाता हूँ. और उनको भी वैसे हमेशा तो नहीं हो पाता ये, पर कभी कभी ऐसा भी करता हूँ ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन रहे. क्योंकि देखिए, एक बात है, जब हम छात्र होते हैं, जब अपने टीचर्स को देखते हैं बजाते हुए, परफॉर्म करते हुए, तो हमको लगता है यार कितना आसान है कि हम ये तो हम भी कर सकते हैं. बहुत से छात्रों को ऐसा लगता है. और जब कोई मास्टर जैसे बोलते हैं उस्ताद पंडित बजाते हैं, तो हमको देख के लगता है अरे यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ. पर जब असल में वाद्य पकड़ कर या फिर गाना
1: सबके सामने,
2: हाँ नहीं, अपने ही में ही.
1: अच्छा.
2: जब सुनकर गाना बजाना चाहते हैं तब लगता है कि नहीं नहीं, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है, काम है और कैसे आपने कहा, डिसिप्लिन है. ये डिसिप्लिन, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं उनको हम डिसिप्लिन ही बोलते हैं.
1: बिल्कुल.
2: जैसे कि मार्शल आर्ट्स बोलते हैं तो वो आर्ट्स ही हैं. तो वो सुनते ही जो डिसिप्लिन है दिमाग में आ जाता है. और जैसे अगर सितार वादन का हम उदाहरण लें, तो पहले तो बैठना,
1: किस तरह से आप बैठे,
2: आधा घंटा एक घंटा ऐसे बैठना, उसका भी अभ्यास होना चाहिए. और अब एक तो बैठना, उस पर सितार लेकर बैठना, वो बजाना नहीं सिर्फ बैठना. हाँ, तो उसका भी अभ्यास होना चाहिए. अब अगर बैठना आराम हो गया अब बजाते हैं. मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि ये एक ऐसा डिसिप्लिन है, व्हेन यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम देन ओनली द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. क्योंकि जब आप का बैठना प्रॉब्लम नहीं है, आपका सितार पकड़ना प्रॉब्लम नहीं है, आप सितार में हाथ चला रहे हैं,

0: उस पर भी प्रॉब्लम नहीं है, तब असल में संगीत शुरू होता है उसके बाद. तो इस हिसाब से इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू मेंटेन ये सब डिसिप्लिन करना ज़रूरी है.
1: और आपके हिसाब से डिसिप्लिन अलग अलग कॉलेज में विजिट करते समय वहाँ पर डिसिप्लिन के जो लेवल हैं आपको लगता है कि उसको मतलब सॉल्व किया जा सकता है, किसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप किस तरह से इन रेक्टर्स इन प्रिंसिपल्स को आप लाइक काइंड ऑफ एडवाइस देते हैं?
2: तो एजुकेशन डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी ये एक ही पर निर्भर नहीं है, हमें साथ मिलकर इसका सामना करना पड़ता है, चाहे वो पेरेंट्स हो, रेक्टर्स हो, मैनेजर्स हो, टीचर्स हो. और हर एक लीडर जो रेक्टर मैनेजर होता है उनका एक तरीका होता है, क्योंकि वो रोज़ होते हैं अपने स्कूल में, उनको पता है कि उनकी कॉन्टेक्स्ट उनकी कल्चर क्या है, उनकी विजन क्या है, मिशन क्या है, उसके हिसाब से वो आई एम श्योर वो अपने 100% देते हैं ताकि वो अपने डिसिप्लिन के यू नो मेंटेन कर सके. हाँ तो और जो मैं करती हूँ उसका ये मतलब नहीं है कि जो यही बेस्ट है. दूसरे स्कूल में दूसरे टीचर जो कर रहे हैं बेस्ट है, क्योंकि उसको पता है बच्चे के हिसाब से.
1: बिल्कुल,
2: हर चीज़ बच्चे के हिसाब से ही बाद में ऐसे ही होता है, बच्चे के हिसाब से ही.
1: अब जाते जाते जितने सारे लोग इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, क्योंकि शिक्षक दिवस पर ये कार्यक्रम है, तो मैं पहले तो सभी जितने शिक्षक हैं उनको आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि देखिए कैसे आपने कहा, एक शिक्षक की गलती पूरे समाज को बिगाड़ सकती है. और मैं अपनी माताजी की एक बात यहाँ पर दोहराना चाहूँगा, क्योंकि वो बचपन से ही चाहती थी कि मैं और मेरी छोटी बहन जो है शिक्षक बने, और आज हम दोनों शिक्षक हैं. तो वो कहती थी, अगर तुम शिक्षक बनोगे तो एक बच्चे का जो भविष्य है तुम्हारे हाथों में होता है, और ये जैसे कि बोलते हैं ना प्रजापिता, जो संसार की रचना करता है, तो उसी हिसाब से एक शिक्षक जो है बच्चे की मानसिकता, उसके जो विचारधारा है उसकी रचना करता है. तो सबसे पहले तो शिक्षकों को नमन, और छात्रों को ये मैं कहूँगा कि जैसे हमने कई बार कहा इस मंच पर कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो काफ़ी कम हो चुकी है आजकल. बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, ये गलत नहीं है, सुविधाएं होनी चाहिए क्योंकि ये प्रोग्रेस का की निशानी है, पर ये सुविधा हमारे जो वैल्यूज़ को कम ना कर दे. सुविधा अच्छी है पर वैल्यूज़ जो हैं हमको उसको मेंटेन करना पड़ता है. शिक्षक तो अपना कर ही रहे हैं, माता पिताओं से भी निवेदन है कि बच्चों को सभी सुविधाएं दें, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स वगैरह सब अभी तो सब बच्चों के पास हैं, और ये गलत नहीं है. ठीक है, बहुत लोग समझते हैं कि मोबाइल फोन्स अब उसको इस्तेमाल करने की शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए. तो इस हिसाब से मैं बहुत धन्यवाद आपको भी करूँगा, MBC को भी करूँगा कि इस विषय में आपने ये कार्यक्रम करने को सोचा, और बहुत धन्यवाद है.
1: बहुत बहुत धन्यवाद. और आप क्या कहना चाहेंगे हंसिनी जी, खासकर जितने सारे शिक्षक और छात्र ये कार्यक्रम देख रहे हैं?
2: हमारे ग्रंथ ने कही दिया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, तो नमन है सभी को. और मैं कहना चाहूँगी कि हम सब टीचर हैं, जिंदगी ही एक टीचर है, हमें बहुत कुछ सिखा जाती है. तो हम बोलते हैं ना बेसिक नीड्स क्या होते हैं, पानी, कपड़ा, मकान. मैं ऐड करना चाहूँगी कि लव भी एक बेसिक नीड है. तो प्यार करो, सुनो, समझो, चाहे वो बच्चे हो, एडल्ट हो, कोई भी हो, हम सबको यही चाहिए. अंत में अगर वो है तो अपने आप ही बहुत कुछ चीज़ें हो जाएगी.
1: जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद हंसिनी, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद कि आज आप लोग यहाँ पर आए और शिक्षक से जुड़ी चुनौतियों के बारे में आप लोगों ने बात की।

0: तो दर्शकगण, आप लोगों ने बहुत ही ध्यान के साथ ये कार्यक्रम सुना, इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद समर्पित करना चाहेंगे। हमारी माँ हमारी प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। जितने सारी माताएं इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको MBC की पूरी टीम की ओर से शत शत नमन। तब तक अभी को दीजिए अनुमति, नमस्कार और प्रणाम।
1: आज की चर्चा RM3 Radio.

0: गंभीर घटना पर लगातार नजर रख रहे हैं। इस घटना में 27 साल की एलवजी टोमास को गोली लगी थी और वो घायल हो गई थी। प्रधानमंत्री संबंधित अधिकारियों के लगातार संपर्क में है ताकि हालात में हो रहे बदलाव की जानकारी मिलती रहे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाई जाए और ये काम पूरी पारदर्शिता और मौजूदा नियमों और कार्यविधि की पालन करते हुए किया जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने रोड्रिग्स का अपना दौरा स्थगित करने का भी फैसला किया है। ये दौरा रविवार 11 अक्टूबर 2026 को होने वाला था। देश में पानी की कमी पर कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई। अपर प्लान विलियंस में हालात सुधारने के लिए 9 बोहोल से महीने के अंत तक 30,000 क्यूबिक मीटर तक अतिरिक्त पानी नेटवर्क में दिया जाएगा। पिछड़े और पापा नदियों का पानी लामार स्टेशन की तरफ मोड़ा जाएगा, जबकि मगलोंग जलाशय से भी हर दिन 30,000 क्यूबिक मीटर अतिरिक्त पानी मिलेगा। पानी बांटने के लिए निजी टैंकरों की मदद ली जाएगी। साथ ही घरों में टंकी नहीं रखने वाले परिवारों को भी वाटर टैंक और वाटर पंप ग्रांट स्कीम का लाभ दिया जाएगा। Front militant progressiste के अधिकारियों ने आज प्रेस को संबोधित किया। दल के नेता पॉल ब्रांश ने देश में पानी की स्थिति को चिंताजनक बताया। उन्होंने जल्द से जल्द नियमित जल आपूर्ति के लिए समाधान लागू किए जाने और महोबाक्वा जलाशय के लिए वैज्ञानिक अध्ययन किए जाने की मांग की। साथ ही शागस मामले और नेशनल क्राइम एजेंसी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। प्लाजा रोजल में आज ब्रेस्ट और सर्विकल कैंसर की स्क्रीनिंग का एक अभियान चलाया गया। हेल्थ केयर लीडर्स नेटवर्क अफ्रीका की ये पहल निशुल्क रही। मकसद रहा महिलाओं में बचाव के तौर पर अर्ली स्क्रीनिंग की आदत उजागर करना। और विदेश में इसराइल की डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख यायर गोलन ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या पर सवाल उठाते हुए उसे इसराइल के लिए एक गलती करार दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार गोलन ने शुक्रवार को स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिका इसराइल युद्ध की शुरुआत में खामेनेई को निशाना बनाने से इसराइल के राष्ट्रीय हितों को कोई ठोस लाभ नहीं पहुंचा है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमें आगे दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu.
2: You're listening to RM3 Radio.

जननी जन्मभूमि को प्रणाम करते हुए आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। रेडियो मनोरंजन के सभी श्रोताओं को भाई संजय की ओर से प्यार भर नमस्कार आदाब एंड वेलकम इन गीत गाथा देश की। आप सबों का हार्दिक स्वागत है और आज हम विषय तुरंत ही शुरू करते हैं। आज हम देश के एक लोकैलिटी को ढूंढ रहे हैं। आज जिस लोकैलिटी को हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे देश के सबसे पुरानी लोकैलिटीज में गिनी जाती हैं। उस लोकैलिटी से समुद्र का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। वहाँ की जनसंख्या साल 2022 के सेंसस में लगभग 15,000 की थी। सो आपको काफी संकेत मिल गया होगा इस पहले माइक में। आप हमें फोन करके बता सकते हैं ऑन कैट सौ कैतम संजिस हम किस लोकैलिटी को ढूंढ रहे हैं। हमारे देश के सबसे पुरानी लोकैलिटीज में से एक लोकैलिटी से समुद्र का नज़ारा बहुत अद्भुत दिखता है और वहाँ की जनसंख्या साल 2022 में लगभग 15,000 की थी। अंदाजा लगाइए और हमें फोन करके बताएं

0: गीत गाथा देश की। आज हम एक विशेष लोकैलिटी का नाम ढूंढ रहे हैं और पहले टिप्स के बाद चले हम पहले श्रोता से भी मिल लेते हैं। हेलो,
1: जय सियाराम भाई जी।
0: जय सियाराम। जय मॉरिशस महाराज जी, कैसी हैं?
1: सब ठीक, आप कैसे हो?
0: आप हमें सब ठीक चल रहा है। आप हमें बताएं कि कल के लिए तैयारी कैसी हो रही है?
1: कल के लिए तैयारी लगभग समाप्त हो गई, सिर्फ सुबह को उठने से पूजा से शुरू करेंगे।
0: हम अपने श्रोताओं को याद दिला देते हैं कि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, इसी संदर्भ में आपसे हमने प्रश्न पूछा। चलें, जो हमारा प्रश्न हमारा विषय है, सो आपके अनुसार जिस लोकैलिटी की बात कर रहे हैं वो कौन सी लोकैलिटी होगी, हो सकती है? व्यूंगापो। अगर हम आपसे पूछें कि आपको लगता है कि व्यूंगापो में 15,000 लोग रहते हैं, आपको लगता है?
1: हो सकता है।
0: नहीं, व्यूंगापो में इतने सारे लोग नहीं रहते हैं, लेकिन आपने भाग लिया, आपने कोशिश की। माला जी बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थोड़ी देर में आप मैसेज के जरिए हमें अपने ऑप्शंस भेज सकती हैं। ओके,
1: धन्यवाद भाई।
0: जय मॉरिशस।
1: जय माता दी।
0: जय माता दी।

चले बढ़ते हैं दूसरे टिप्स की ओर। ये लोकैलिटी अपने डिस्ट्रिक्ट के मेन गांव अपने डिस्ट्रिक्ट का मेन गांव माना जाता है और मुशिस के इतिहास से इंट्रिकेटली जुड़ा हुआ है। इस लोकैलिटी की स्थापना डच वालों ने की थी, लेकिन इस लोकैलिटी में विकास तब हुआ जब मशहूर फ्रेंच गवर्नर इस देश में आए।

0: 4:18, चले हम मिलते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो
1: हेलो भैया, नमस्ते।
0: नमस्ते रंजन जी, कैसे हवा बोला था?
1: ठीक है भैया।
0: मेलरोज के रंजन जी, रंजन बालचंद जी, जिनकी आवाज प्रोग्राम में अक्सर गूंजती है, तो बोला तुम्हारे हिसाब से आज
1: हमारे हिसाब से गांव बे
0: यानी कि हमर जो दूसरा टिप देनी है, शायद आपने सुन रहा
1: नहीं सुननी है।
0: अभी फिर से तोरा बोल दे बता जा कि ये लोकैलिटी अपने डिस्ट्रिक्ट की मेन, इस अपने डिस्ट्रिक्ट का मेन गांव है और मॉरिशस के इतिहास से इंट्रिकेटली जुड़ा हुआ है। इस लोकैलिटी की स्थापना डच वारों ने की थी, लेकिन इस लोकैलिटी में विकास तब आया जब एक मशहूर फ्रेंच गवर्नर ने देश की भागदौड़ संभाली। सो गांबे उतना फिट नहीं होता है इसके साथ, लेकिन आपने भाग लिया और रंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिल जा। जय मॉरिशियस।
1: अगर मुझे
0: जय
1: तो हम आपको फिर फोन करेंगे
0: अवश्य। जय मॉरिशियस।

हमारे इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देते हैं आपको चंद अन्य टिप्स। इस लोकैलिटी के वेल प्लान्ड और चौड़े रास्ते, वाइड स्ट्रीट्स, फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन के जमाने से प्रसिद्ध है। इस लोकैलिटी के स्कूल्स और कॉलेजेस के नाम प्रसिद्ध आर्मी जनरल्स पर रखे गए हैं।

हम फिर से याद दिला देते हैं इस लोकैलिटी के वेल प्लान्ड और चौड़े रास्ते वाइड स्ट्रीट्स फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन के जमाने से प्रसिद्ध है इस लोकैलिटी के स्कूल्स और कॉलेजेस के नाम प्रसिद्ध आर्मी जनरल्स पर रखे गए हैं जवाब के तौर पर त्रियुले की सिमला जी ने फिर से कहा व्यू कॉम्पो जी नहीं व्यू कॉम्पो जवाब आ चुका था और हमने कहा था कि ये जवाब सही नहीं है लेकिन फिर भी कह देते हैं कि माला जी ने हमें सही जवाब भेज दिया है माला जी फ्रॉम कटरबोन बधाई हो थैंक यू

0: देश के इस सफर में हमारे हम सफर बने रहने के लिए आप सबों को शुक्रिया। आज की गीत गाथा देश की प्रोग्राम के अंतर्गत हम एक लोकैलिटी को ढूंढ रहे हैं और जो अन्य संकेत हम आपको देने वाले हैं इसके आधार पर आपको सही जवाब अवश्य मिल जाएगा। ये लोकैलिटी एयरपोर्ट से दूर नहीं है और यहाँ पर इतिहास से जुड़े हुए अनेक टूरिस्ट अट्रैक्शंस पाए जाते हैं, जैसे कि नेवल म्यूजियम और साथ ही साथ आधुनिक मॉडर्न आकर्षण जैसे वाटरफ्रंट भी पाया जाता है। सो अब की बार सही जवाब आपके पास जरूर होगा।
1: You're listening to RM3 Radio Man

याद रहे आप हमें अपने अपने जवाब 5250-6200 पर दे सकते हैं via नॉर्मल मैसेज या तो via व्हाट्सएप मैसेज।

4:31 हुए हैं। प्रकाश वती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम बेल्जियम, और उन्होंने ये लिखा है कि नमस्ते संजी, ये प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है, स्विमिंग गई थी और आपको सुनने के लिए जल्दी आ गई, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश वती जी। लिखते हैं कि 2 weeks मिस कर दी, आज ज़रूर टाइम पर आ जाऊंगी प्रकाश वती। थैंक यू प्रकाश वती जी। सो सरोजनी जी ने हमें फ़ोन किया फ्रॉम गोम्बुआ, और उन्होंने जवाब दिया, कौन सा जवाब दिया, ला कॉम्ब्यूज। अब हमको नहीं लगता है कि ला कॉम्ब्यूज गाँव में 15,000 लोग रहते होंगे। अच्छा सा प्यारा सा गांव है इन द साउथ ईस्ट, और ये सच है कि वो एयरपोर्ट से दूर नहीं है, लेकिन ला कॉम्ब्यूज में 15,000 लोग नहीं, ये नहीं। और वहाँ पर जैसे कि हमने और संकेत दिया कि आर्मी जनरल्स के नाम पर अनेक स्कूल्स और कॉलेजेस पाए जाते हैं। अब ला कॉम्ब्यूज में इतने सारे स्कूल्स तो नहीं है, हो सकता है कि एक प्राइमरी स्कूल हो, लेकिन कॉलेज आई डोंट थिंक सो। सो सरोजनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रयास के लिए। और हमने ये भी लिखा कि वहाँ पर

और कॉलेजेस पाए जाते हैं, अब ब्लैक कॉम्बीज में इतने सारे स्कूल्स तो नहीं है, हो सकता है कि एक प्राइमरी स्कूल हो लेकिन कॉलेज आई डोंट थिंक सो। सो सरोजनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रयास के लिए। और हमने ये भी लिखा कि वहाँ पर

सो इसमें मॉरीशस के बहुत सारे हमारे लिसनर्स के साथ साथ विदेश से भी लोग जुड़े हुए हैं और उनमें से एक है मनीता जी जो फ्रांस से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने भी सही जवाब दिया है इस बात का सबूत कि विदेश में रहने के बावजूद भी उनका लगाव अपने देश के साथ है

जिन जिन लोगों ने हमें सही जवाब दिया और जिन्होंने जवाब देने की कोशिश की, आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया। Emmanuel Onctil, SSS, Loreto Convent, दो सिनेमा घर, माहे और उदयों, जो If I'm not mistaken दोनों बंद हो चुके हैं, साथ ही साथ अनेक शॉपिंग मॉल्स और एयरपोर्ट से दूर नहीं वहाँ पर नेवल म्यूजियम भी है। उस गांव के रास्ते बहुत ही चौड़े हैं, वेस्टिज ऑफ द फ्रेंच कॉलोनियल पीरियड। वैसे तो अनेक गांव जो होते हैं उनके रास्ते बहुत ही पतले होते हैं। इफ़ यू गो टू थ्रियोले, बहुत से रास्ते बहुत ही पतले होते हैं। अनेक गांवों में ये स्थिति है, रोजबेल में भी ये स्थिति है, लेकिन कुछ गांव जो फ्रेंच ज़माने में जिनकी प्लानिंग की गई थी वहाँ के रास्ते बहुत ही चौड़े 18 फीट के होते हैं। मैं अंदर के रास्तों की बात कर रहा हूँ, इन द इंटरनल रोड्स, द इंटरनल लेन्स। और सही जवाब है बेशक मेबर्ग। मेबर्ग के साथ फ्रेंच कॉलोनियल पीरियड के माई दुला बूदने का नाम जुड़ा हुआ है। जितने भी लोगों ने सही जवाब दिया आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेबर्ग के साथ आपकी कोई विशेष याद जुड़ी हुई है या मेबर्ग के बारे में आप कुछ विशेष कहना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, जिसके बारे में हमने अभी तक नहीं कहा है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं

0: जी हाँ दोस्तों, जिस लोकैलिटी की आज हम जिक्र कर रहे हैं वो है मेबर्ग। किसी ने कहा कि संजी हम तो वहां पर कभी भी नहीं गए। हाँ हो सकता है, लेकिन ऐसे छोटे देश में अगर कोई ऐसी जगह हो, काफी प्रमुख जगह हो जहां पर हम नहीं गए हो, तो क्या कह सकते हैं। चलें हम मिलते हैं इनसे। हेलो
1: हेलो,
0: जय मॉरिशस।
1: सबके
0: आपको भी प्रणाम। अनीता जी,
1: हाँ,
0: ओशनवा के रहने वाली अनीता जी, आप मेबर्ग गई हुई हैं?
1: हाँ, कई बार गई है।
0: कई बार कैसे गई हैं? हाँ। बस में गई हैं?
1: बस में सीनियर सिटीजन।
0: अच्छा, सीनियर सिटीजन
1: जाते हैं तो गई है।
0: अच्छा, सो एक जगह बताएं मेबर्ग, जब आप मेबर्ग की सैर की है तो कहाँ पर गई हैं?
1: लाफो गई है।
0: आप जानते हैं कि मेबर्ग में लाफो कब लगती है?
1: लाफो मंडे को।
0: हाँ, मंडे को
1: लाफो है। और वहीं पर वाटर फ्रंट है, वहाँ एक मंदिर है, बुद्धा है, बड़ा बुद्धा है।
0: वैसे हम कहते हैं कि बुद्धा है, लेकिन वो बुद्धे की प्रतिमा नहीं है, गौतम बुद्ध की प्रतिमा नहीं है। वो स्वामी शिवानंदा की लेकिन लोग मिसलीड हो जाते हैं। वो और वहीं पर एक एक एक चिन्ह है, एक एक मॉन्यूमेंट है, खासकर 1 फरवरी को वहाँ पर जाकर फूल चढ़ाए जाते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ स्लेवरी डे, स्लेवरी एबोलिशन डे। तो अनीता जी, बहुत
1: मंदिर भी है वहाँ, हम लोग पूजा भी करते हैं।
0: हाँ, अनेक अनेक धर्म स्थल हैं मेबर्ग में। सो अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भाग लिया। और ऐसे ही मॉरिशस की सैर करते रहे। जय मॉरिशस।
1: आपको भी धन्यवाद और सभी लोगों को दुर्गा पूजा अभिनंदन हो।
0: या माता की कृपा सब पर बनी रहे। जय मॉरिशस, जय माता दी,
1: जय मॉरिशस।

सब मेबर के साथ अगर कोई और चीज़ है जो आप जुड़ना चाहें तो हमें फ़ोन कर सकते हैं ऑन 402-421 सुसंजीस। मेबक के बे में यानी कि समुद्र में जो टापू पाया जाता है उसका नाम क्या है ये भी बता सकते हैं। मेबक से जब आप रास्ता लेते हैं ईस्ट की ओर जाते हैं तो जो पुल आता है उसके बारे में भी बात कर सकते हैं।

हम तो यही चाहते हैं कि हम अपने देश से, अपने देश के इतिहास से, अपने देश के गांवों से, अपने देश के शहरों से और भी ज्यादा प्यार करें। यहां पर प्रकाशवती जी कहते हैं कि जब वे छोटी थी तो हमेशा जब पिकनिक पर जाती थी तो मेबर्ग के म्यूजियम जाती थी अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू प्रकाशवती जी, और शुक्रिया जितने भी लोगों ने आज के हमारे इस प्रोग्राम में भाग लिया। मकसद हमारा यही है था कि आप अपने देश के बारे में ज़्यादा जानें और जितना कुछ जानते हैं अन्य लोगों के साथ उसे बांटें। सो आज हमने मेबर्ग के बारे में बात की। मेबर्ग से निकलते समय जब आप बस लेते हैं और ईस्ट की ओर जाते हैं तो विंडवा के रास्ते पर से गुजरते हैं, लेकिन विंडवा पहुँचने से पहले एक लंबा पुल है जो देश के सबसे लंबे पुलों में से एक गिना जाता है, जो रिवियर लाशो पर से गुजरता है। उसके बाद आता है रिवियर डी क्रियोल, दूसरी नदी, और उसके बाद आता है अनेक गांव जिनमें व्यू कॉपो, दो भ्रा, क्वाटर सोर, फिर आगे जाकर बूशों आदि सब, और आगे जाकर ट्रू दो डूस, बेले रिवियर सेश आदि सब। जबकि अगर आप दक्षिण की ओर जाएंगे, सुया की ओर जाएंगे तो बीच में आता है पॉइंट डिस्नी, पॉइंट डिस्नी के बाद ब्लू बे रिजोर्ट है, और नीचे गुजरते हुए रिविया दे जोंगी, लेस्कालिये, ट्रॉ बुटिक लेस्कालिये, और उसके बाद बेनारेस, कांजाब, रिविया दे जोंगी, तायाक, सुया का आदि सब। सो इसके जरिए हम अपने देश के बारे में इस प्रोग्राम के जरिए ज़्यादा जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा ही प्रोग्राम लेकर हम हाजिर होंगे नेक्स्ट सैटरडे को। एक बार फिर

नवरात्र की शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी सुनने वालों को। हमारे बाद पूनम जी आ रही हैं आपका साथ निभाने। आज्ञा दीजिए, शुभ सप्ताहांत, नमस्कार, जय मॉरिशस।

0: पुराने नगमे।
1: हेलो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप? 5:08 हो चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे इस प्रोग्राम यानी कि पुराने नगमों में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे सिंगर की जिनकी आवाज़ में कभी प्यार सुनाई देता है और कभी मस्ती और कभी ऐसी फीलिंग कि गाना ख़त्म होने के बाद भी याद रहता है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं सोनू निगम की। जानेंगे उनके बचपन से लेके बॉलीवुड तक के कुछ दिलचस्प बातें और सुनेंगे उनके सुपरहिट गाने। तो चलिए शुरुआत करते हैं पुराने नगमे।
2: RM3 रेडियो

0: पुराने नगमे।
1: 5:14 हो चुके हैं दोस्तों और हम बात कर रहे हैं आज सोनू निगम की। जी हाँ, बॉलीवुड के एक ऐसे सिंगर जिनकी बात ही क्या। उनका जन्म हुआ 30 जुलाई 1973 यानी कि 30th July 1973 में फरीदाबाद हरियाणा इंडिया में, और उनके पिता का नाम है अगम कुमार निगम और माँ का नाम है शोभा निगम। घर में शुरुआत से ही उनका जो घर में माहौल है म्यूज़िकल है, क्योंकि उनके पापा भी गाते हैं और उनकी मम्मी भी उनका थोड़ा थोड़ा साथ देती हैं, पर सोनू को बचपन से ही सिंगिंग में दिलचस्पी थी। बट कहते हैं ना, बॉलीवुड किसी ना किसी तरह से खींच के ले ही आता है, तो ऐसे ही शुरुआत हुई सोनू निगम की।
2: RM3 Radio.

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो हो, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: 5:21 हो चुके हैं दोस्तों, और जो इस समय हमें सुन रहे हैं, चाहे ड्राइविंग कर रहे हो या घर पर सुन रहे हो, थैंक यू आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आज बात कर रहे हैं सोनू निगम की, जो कि हैं बॉलीवुड के एक ऐसे वर्सेटाइल सिंगर जिनकी बात ही क्या। कहते हैं कि जब सब बच्चे स्कूल जाते हैं या घर में खेलते हैं, शैतानियाँ करते हैं, यानी कि 4 साल की उम्र में ही सोनू निगम ने गाना शुरू कर दिया था। उनके जो पापा हैं उनको, वो मोहम्मद रफ़ी के बहुत बड़े फ़ैन थे और उस टाइम उनके गाने गाया करते थे। उनको सुनते सुनते सोनू निगम को भी बहुत खुशी मिलती और वो उनको कॉपी करते, और कॉपी करते करते 4 साल की उम्र में उस स्टेज पर चढ़ गए, और स्टेज पर चढ़कर उन्होंने शुरू किया मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को गाना। और जब गाना शुरू किया तो कहते हैं वो समय और आज का समय, आज तक वो स्टेज पर हैं। कहते हैं मोहम्मद रफ़ी की ब्लेसिंग उनके ऊपर इतनी आई कि आज तक उनको सिर्फ ब्लेसिंग्स ही मिल रही हैं। शायद इसी को कहते हैं, अगर बचपन से किसी का किसी की तार किसी के साथ जुड़ जाए तो ऐसे ही सिंगर बनते हैं।
1: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: 5:29 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं पुराने नगमों के साथ में। और आज हम बात कर रहे हैं सोनू निगम की, जो कि एक बहुत ही बॉलीवुड के बहुत ही क्लासिक लेजेंड्स में से आते हैं। एक ऐसे सिंगर जिनको धुन की बचपन से ही कहते हैं सौगात मिली। कहते हैं उन्होंने जब एल्बम्स बनानी शुरू की तो बहुत सारी एल्बम्स उनकी हिट हुई, पर कहीं कहीं पर उनको शौक चढ़ गया था एक बार एक्टर बनने का भी। उन्होंने एक्टिंग का भी सोचा, पर कहते हैं कि तब तक भी लोग उनको इतना नहीं जानते थे। तो 1995 में एक म्यूजिकल शो था सारे गामा पा, जिसके वो होस्ट बने। और कहते हैं हर घर में उनका जो अंदाज था, इतना फ्रेंडली था, इतना हसमुख था, उनका चेहरा बहुत क्लासी था और सब लोग उन्हें पसंद करने लगे और बस वो हर घर की एक पहचान बन गए। यहाँ से शुरुआत हो गई सोनू निगम की दुनिया की।
2: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: 5:35 हो चुके हैं और हम बात कर रहे हैं सोनू निगम की। और जैसे कि उनकी आवाज सुनते ही बहुत सारे हीरोज जो होते हैं हमारे दिमाग में आने लग जाते हैं। जैसे उन्होंने शाहरुख खान के लिए बहुत गाया, आमिर खान के लिए गाया और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स जिनके लिए उनकी आवाज़ बिल्कुल फिट बैठती थी, हमेशा गाते रहे। ऋतिक रोशन हो गए और अभी उन्होंने अग्निपथ में जो उनके लिए गाया वो तो बहुत ही कमाल के गाने थे। तो कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया शुरुआती दिनों में, अब तो खुद भी वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और कहते हैं एक्टर भी हैं, सिंगर भी है, क्या नहीं है, उनका अंदाज़ ही कुछ अलग है। अनु मलिक के साथ गाया, जतिन ललित ने उनके साथ बहुत काम किया, एआर रहमान के साथ उन्होंने काम किया, शंकर एहसान लॉय, नदीम श्रवण और विशाल शेखर। कहते हैं इनकी लिस्ट इतनी बड़ी है पर उनको जितना ज़्यादा

0: मान और सम्मान और प्यार मिला रोमांटिक गानों में ज्यादा मिला।
1: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: 5:42 हो चुके हैं दोस्तों और हम बात कर रहे हैं सोनू निगम यानी कि सिंगर सोनू निगम की। उन्होंने कन्नड़ सिनेमा के लिए बहुत गाया, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगू सभी भाषाओं में गाया, पॉप एल्बम्स निकाले, कंसर्ट्स के वर्ल्ड वाइड। बॉलीवुड में कहते हैं ना कि म्यूजिकल करियर उनका सबसे बेस्ट रहा। फिर उन्होंने 15 फरवरी 2002 को मधुरी माँ के साथ शादी की। उनका उन दोनों का एक बेटा है जिसका नाम है निवान। और सोनू की दोनों सिस्टर्स जो हैं मीनाल एंड निकिता, निकिता सिंगिंग में है और मीनाल अपने एक बिजनेस में जुड़ी हुई है। और कहते हैं कि उनके पूरा परिवार ही म्यूजिक इंडस्ट्री में ही है। तो कहते हैं कि धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को ऐसे ग्रोथ दिया और उन्होंने तकरीबन आप मतलब मानेंगे कि 70,000 गाने गाना, यानी कि बहुत बड़ी एक संख्या होती है। यहाँ पर उन्होंने बहुत से गाने गाए और कहते हैं वर्ल्ड में एक अलग सा नाम अपना बनाया, यानी कि 6,000 सॉन्ग्स के अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने गाने गाए हैं और 28 भाषाओं में गाने गाए हैं। तो यही तो बात है सोनू निगम की, कुछ ऐसी ज़िंदगी की हकीकतें हैं जो कि सिर्फ वो ही जानते हैं।
2: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: 5:50 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम सिक्के साथ पुराने नगमों के साथ। हम बात कर रहे हैं सोनू निगम की, उनका जो म्यूजिकल करियर है उसमें उन्होंने 6,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं और 28 लैंग्वेजेस में गाए और उन्हें अवार्ड्स भी बहुत से मिले। यानी कि लिस्ट तो इतनी लंबी है कि हम क्या बताएं, पर उनको नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले, हिंदी फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, 4 आईफा अवार्ड्स मिले और 2022 में पद्मश्री जैसे सम्मान के साथ उनको सम्मानित किया गया। यानी कि बचपन से ही उनके जो ज़िंदगी में संगीत था कहीं ना कहीं उसका सफ़र पूरा चल रहा है अभी तक। और हम तो यही कहेंगे उनके आगे लंबी उम्र हो, वो हमें ऐसे इतने सारे गाने देते रहें और उनकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आएँ, यही तो हम चाहते हैं। और ऐसे सिंगर्स का जो कि हमारे साथ हमेशा रहते हैं, यहाँ पर आते हैं मॉरिशस में इतने सारे गानों के साथ में और इतने प्यारे कॉन्सर्ट्स करते हैं, हम हमेशा चाहेंगे वो हमेशा आते रहें और आप सब उनको सुनते रहें। चलिए जी, थोड़ी देर के बाद हम जुड़ेंगे विस्तार से समाचारों के साथ। साथ देते रहिएगा, ये है आपका ही प्रोग्राम

नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। Quand le vieux गोलीकांड में पुलिस सर्जेंट गौतम सिंह तुकु को अदालत में पेश करने के बाद दोबारा हिरासत में भेजा गया, गोली चलने के हालात की जांच जारी। इस बीच इलाके में बुधवार से तनाव का माहौल, सड़कों पर रुकावटें और आगजनी की घटनाएं सामने आई। एलर्जी तुम्मा के इलाज के लिए भारत से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम को तुरंत मॉरिशस बुलाने का फैसला स्वास्थ्य मंत्री

अनिल बेचू ने प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद दी जानकारी। Quand le vieux Migoli लगने से घायल एलोजी टोमा की हालत को लेकर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने चिंता जताई, उन्होंने परिवार से खुद की बातचीत, पूरी जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस घटना के चलते प्रधानमंत्री ने रोड्रिग्स की अपनी यात्रा स्थगित की।

0: इजिप्ट की कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। और अब समाचार विस्तार से। कॉलिव्यू में कल रात गोली लगने से 27 साल की एलोजी टुमा घायल हो गई। एक बच्चे की मां एलोजी उस समय एक वान में सवार होकर अपने घर जा रही थी। बताया जा रहा है कि गोली पुलिस के सर्जेंट गौतम सिंह टुको ने चलाई थी। उन्हें आज दोपहर बाद वीकेंड कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें दोबारा हिरासत में भेज दिया गया। गोली किन हालात में चली, इसकी जांच अभी जारी है। इस बीच कॉलिव्यू में पिछले बुधवार से तनाव बना हुआ है। कुछ लोग सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर रहे हैं और आगजनी की घटनाएं भी सामने आई है। और कॉलिव्यू में गोली लगने से घायल एलोजी टुमा के इलाज के लिए भारत से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक टीम को तुरंत मुर्शिद से बुलाने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री निल बेचू के मुताबिक इस मामले में उनकी प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से बातचीत हुई है। उन्होंने घोषणा की कि भारत से 4 डॉक्टरों की एक टीम सोमवार को मुर्शिद पहुंचेगी। ये टीम एलोजी टुमा का ऑपरेशन करेगी। और स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी सेहत और इलाज को लेकर और क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं।
1: हम लोगों ने डॉक्टरों का एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मरीज की देखभाल के लिए हम लोगों ने वहाँ पर रखा, और डॉक्टर इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि मरीज को देश के बाहर इलाज के लिए नहीं भेजा जा सकता है, क्योंकि समस्या कुछ गंभीर लगता है। उतना आसान नहीं है, क्योंकि आप जानते हो वे एंचुबे है, ताकि कोई ऐसा चीज़ ना हो जाए पेशेंट के साथ। तो हम लोग इस निर्णय पर पहुँचे कि भारत से डॉक्टरों का एक टीम, 4 सदस्य के टीम को मॉरिशस में हम यहाँ बुलाएं, ताकि मरीज का जो ऑपरेशन करना है, जो गोली गया है अंदर, उसके वे निकाल सकें। प्रधानमंत्री के संपर्क पर मैं हूँ और उनकी पूरी सहयोग हमारे साथ है, अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगा रहे हैं, और उनके सहयोग से ही हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि भारत से एक अच्छे टीम डॉक्टर यहाँ आए और पेशेंट का ऑपरेशन कर सकें। हमारे देश के राष्ट्रपति भी मरीज की स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंता प्रकट किया है। तो मैं सभी को आश्वासन दिलवाना चाहूँगा कि सरकार की ओर से, हमारी ओर से, डॉक्टरों की टीम की ओर से सब कुछ किया जा रहा है, ताकि जो पेशेंट है, जो मरीज है, उनका इलाज हम अच्छी ढंग से कर सकें।
0: कॉलिव्यू में गोली लगने से घायल एलोजी टुमा की हालत को लेकर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने गहरी चिंता जताई है। महिला का इलाज इस समय आईसीयू में चल रहा है। प्रधानमंत्री दफ्तर की ओर से जारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री ने खुद एलोजी टुमा के परिवार से बात की और इस मुश्किल घड़ी में उन्हें अपना समर्थन दिया। उन्होंने एलोजी टुमा के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना भी की है। घटना की जांच जारी है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि मामले की पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी, किसी भी बात को छिपाया नहीं जाएगा। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कॉलिव्यू में हुई इस घटना के बाद प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने अपनी रोड्रिक्स यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी है। प्रधानमंत्री दफ्तर के अनुसार इस यात्रा के लिए जल्द ही नई तारीख तय की जाएगी। और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आर्यन नवामारी ने कॉलिव्यू गोलीकांड के मामले पर कहा कि सरकार इस मामले पर बारीकी से नजर रख रही है और कोई बात छिपाई नहीं जाएगी। उन्होंने गवाहों से बिना डरे आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार ने घायल महिला के इलाज के लिए जल्द से जल्द विदेशी डॉक्टरों को बुलाने की व्यवस्था की है और मामले की पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी।
2: Depuis ce matin, mon contact avec le ministre Nagalingom, qui est aussi député de la circonscription. Mouzin Diaou, qui est en contact constant avec le Premier ministre, qui peut suivre l'affaire de près. Et le gouvernement, dans son ensemble, peut suivre ces affaires-là de très, très près. Mouzin sur la population qui n'a pas aucun cover-up et nous invite tout le monde qui a envie de témoigner, vienne de l'avant, pas besoin d'impire. nous exprime

0: nous solidarité à toute la famille et moi sûr eux qui le gouvernement pour faire tout ce qui besoin pour faire toute la lumière là et qui madame là pour gagner tout soin qui besoin.
1: अब हर दिन नलों में पानी नहीं आएगा। महोबा को जलाशय में पानी का स्तर लगातार गिरने के कारण अब प्लेनविलियंस के कई इलाकों में पानी की सप्लाई के समय में बदलाव किया जा रहा है। इलाके के हिसाब से लोगों को एक दिन छोड़कर या हर दो दिन बाद पानी मिलेगा। इस मुश्किल स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कुछ आपात कदम भी उठाए हैं। पानी की सप्लाई बढ़ाने के साथ साथ परिवारों को पानी जमा करने के लिए मुफ्त पानी की टंकियां भी दी जाएंगी। इन कदमों से लोगों को कितनी राहत मिलेगी और पानी की नई व्यवस्था कैसे होगी, इस पर आधारित हम बाद में एक रिपोर्ट पेश करेंगे। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। फ्रों मिलिटां प्रोग्रेसिस्ट के नेता पॉल बेरांजे ने मॉरिशस में पानी की मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता जताई है। आज सुबह एक प्रेस सम्मेलन में उन्होंने देश में पानी की कमी और इससे पैदा हो रही परेशानियों पर अपनी बात रखी। नेशनल क्राइम एजेंसी और शागस के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। ज्यादा जानकारी अदिति अवतार के साथ।
2: पानी की स्थिति पर बात करते हुए पॉल बेरांजे ने कहा कि देश में जनता के बीच भेदभाव और अन्याय की भावना मौजूद है। उनका कहना है कि अगर ठोस समाधान नहीं किए गए तो ये समस्या और बिगड़ सकती है। फोमिलिता पोगसिस के नेता ने भूमिगत जलाशय खोदने, समंदर में बड़ी मात्रा में पानी के बहाव और रिविया देजोंगी बांध की परियोजना से जुड़े फैसलों पर टिप्पणी की जो अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। पॉल बेरांजे ने कहा कि नियमित जलापूर्ति के लिए समाधान लागू करना बहुत आवश्यक है। साथ ही उन्होंने माओवाकवा के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन स्थापित किए जाने का भी विचार दिया। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि आज की प्रमुख समस्या माओवाकवा है। इस पर हर तरह की जानकारी क्यों देनी कि अब वहाँ बारिश नहीं होती या बारिश की बूंदे अब पहले से ज्यादा छोटी है, जबकि मेरे अनुसार आज तक कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है कि वहाँ के फीडर कैनल्स के पानी कहाँ जाते हैं। इस समस्या के सही कारण आम किए जाने चाहिए और इस पर अध्ययन करना अनिवार्य है। इस प्रेस सम्मेलन के दौरान मौजूद हुए विपक्ष नेता चेतन बाबूलाल ने सरकार से पानी की समस्या का ठोस समाधान ढूंढने की मांग की। नेशनल क्राइम एजेंसी पर बा काउंसिल की बैठक पर भी चर्चा हुई। पॉल बेरांजे ने मॉरिशस के अनुकूल एक नेशनल पॉलिसी सर्विस संस्थान का प्रस्ताव सामने रखा। शागोस मुद्दे को लेकर एफएमपी के नेता ने इस बात पर खेद जताया कि मॉरिशस ने ग्रीनलैंड के मामले को उदाहरण की तरह नहीं लिया। एफएमपी ने कॉलेविया की घटना पर टिप्पणी की और पीड़ित तथा उसके परिवार के प्रति सॉलिडारिटी जताई।
1: देश में पाई जा रही मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने रोड्रिग्स की अपनी यात्रा स्थगित कर दी है। इस संबंध में रोड्रिग्स के कमिश्नर फ्रांको घोंको ने घोषणा की कि 12 अक्टूबर को मनाए जाने वाले रोड्रिग्स स्वायत्ता दिवस के मुख्य मेहमान गणराज्य के उपराष्ट्रपति रॉबर्ट हगले होंगे। खेलकूद, मनोरंजन और नई चीज़ें सीखने का मौका। रेजिडेंस रिशलियू के बच्चों के लिए एक नया चिल्ड्रंस क्लब खोला गया है। यहाँ बच्चे खेलों और अलग अलग गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे, साथ ही अपनी कला और हुनर को भी निखार सकेंगे। नेशनल चिल्ड्रंस काउंसिल की इस पहल का उद्घाटन शनिवार को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अरियाना वोमारी और जूनियर मिनिस्टर कुगान पारापेन की मौजूदगी में हुआ। ज्यादा विस्तार अदिति अवतार के साथ।
2: खेलकूद, हंसी मजाक और अच्छी देखरेख रेजिडेंस रिशलियू में अब बच्चों के लिए खासतौर पर एक जगह बनाई गई है। इस शनिवार को इस नए चिल्ड्रंस क्लब का उद्घाटन किया गया। क्विंचा कहती है, मैं 12 साल की हूँ। मैं ग्रुप में गतिविधियाँ करना पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि खासकर छुट्टियों के लिए ये चिल्ड्रंस क्लब हमारे लिए फायदेमंद होगा। दान कहता है, इस क्लब में मैं छुट्टियों के दौरान अपने दोस्तों से मिल पाऊंगा। मुझे बास्केटबॉल खेलना और चित्र बनाना पसंद है। नेशनल चिल्ड्रंस काउंसिल की इस पहल का मकसद है बच्चों को ऐसा माहौल देना

0: जहां उनका उचित विकास हो और वे अपनी प्रतिभाएं निखार सकें। काउंसिल के अध्यक्ष दानियल मेवेलुइस कहते हैं, हम पहले की तरह उत्साह का माहौल वापस लाना चाहते हैं, जैसे पहले फुटबॉल, वॉलीबॉल और अन्य खेल हुआ करते थे। मौके पर उपस्थित हुए जूनियर मिनिस्टर कुगान पागापेन ने कहा कि युवाओं के कल्याण के लिए ऐसे स्थलों का खास महत्व होता है। उन्होंने कहा, मात्र डिजिटल उपकरणों के साथ जीवन बिताया नहीं जा सकता, बच्चों को हम उम्र युवाओं के साथ घुलना मिलना आना चाहिए, क्योंकि आपसी आदान प्रदान से सभी का फायदा होता है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आरिया नावामारी ने बच्चों से ऑनलाइन अपनी सुरक्षा का खास ध्यान रखने की मांग की। उन्होंने कहा, ऑनलाइन जाते हुए अपना नाम, पता या अन्य निजी जानकारी आम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और बच्चों को गलत रास्तों की तरफ खींचते हैं। इसलिए टैबलेट का प्रयोग करते हुए बच्चों को अपने माता पिता को बताना चाहिए कि वे उस पर क्या देख रहे हैं। इस समारोह का समापन रेजिडेंस रिशलियो के बच्चों को तोहफे देने के साथ किया गया।
1: जैसे कि हम बता रहे थे, देश में पाई जा रही मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने रोड्रिग्स की अपनी यात्रा स्थगित कर दी है। इस संबंध में रोड्रिग्स के कमिश्नर फ्रांको घोंको ने घोषणा की है कि 12 अक्टूबर को मनाए जाने वाले रोड्रिग्स स्वायत्तता दिवस के मुख्य मेहमान गणराज्य के उपराष्ट्रपति रॉबर्ट हगली होंगे। उनको सुनते
2: हैं। Finalement, qui malheureusement, il est trouvé dans l'incapacité de faire le déplacement comme nous guest of honor lors du 24e anniversaire de l'autonomie. Donc, nous chagrin et nous sommes bien préparés. Et par rapport à toute bonne activité qui se prévoit, donc le Premier ministre, finalement, comprend qu'il est pour. Simplement, il peut simplement repousser sa visite chez Rodrigue. Donc, les autres bonnes activités qui tiennent que tu peux inclure le Premier ministre, surtout bonne inauguration qui tu peux non. Donc, tout ça fait une cancel pour le moment. Et aussi, bonnes activités qui tiennent avec bonnes jeunes et aussi les autres bonnes rencontres qui tu peux prévoir, fait une cancel. Donc, à la place du Premier ministre, c'est son excellence Robert Anglais du USK qui Pevin remplace-lui comme invité d'honneur.
1: तो ये बयान रोड्रिग्स के कमिश्नर फ्रांको घोंको का रहा। सोफा पुराना हो गया है, गद्दा बेकार हो गया है, फ्रिज और टीवी भी अब किसी काम के नहीं, तो इनका क्या करें। कैथोबोन में इन दिनों ऐसा ही पुराना सामान सड़कों के किनारे दिखाई दे रहा है। वजह है नगर पालिका का सफाई अभियान, जिसके तहत अक्टूबर की शुरुआत से घरों का बड़ा और बेकार सामान इकट्ठा किया जा रहा है। कैंसर का समय पर पता चल जाए तो इलाज में बड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि महिलाएं बीमारी के लक्षण दिखने का इंतज़ार ना करें। इसी संदेश के साथ आज रोज़ेला के प्लाजा में स्तन और सर्विकल कैंसर की मुफ्त जांच की गई। महिलाओं को अपनी सेहत के प्रति जागरूक करने और जांच की सुविधा उन तक पहुँचाने की ये एक पहल है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और पीढ़ियों से जुड़ी एक अनमोल विरासत है। इसी विरासत को आगे बढ़ा रही है पीढ़ी की प्रतिभा को आज विशेष सम्मान मिला। जैसे इसी विरासत को आगे बढ़ा रही नई पीढ़ी की प्रतिभा को आज विशेष सम्मान मिला। हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी स्पीकिंग यूनियन ने साल 2025 की स्कूल सर्टिफिकेट और हायर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षाओं में हिंदी भाषा और साहित्य में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया। हिमालय की पवित्र वादियों में बसे चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, हिंदू धर्म में इन चारों धामों की यात्रा का विशेष धार्मिक महत्व है। आस्था और भक्ति से जुड़ी इस पवित्र यात्रा को पूरा

0: कर मॉरिशस के 48 श्रद्धालु 8 अक्टूबर को स्वदेश लौट आए। मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन की ओर से आयोजित इस तीर्थ यात्रा के बाद प्लेजेंस हवाई अड्डे पर श्रद्धालुओं ने हमारी टीम के साथ अपने अनुभव साझा किए। विदेश में भारत की राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। कई इलाकों में पुलिस ने बैरिकेड लगाए, जबकि कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। चुनाव आयोग के कामकाज पर उठ रही सवालों के बीच दिल्ली में आज क्या हालात रही है, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में।
1: नई दिल्ली की सड़कों पर पुलिस की भारी मौजूदगी, जगह जगह नाकाबंदी और वाहनों की जांच। राजधानी में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार करीब 25,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, खासकर जंतर मंतर और चुनाव आयोग के आसपास निगरानी बढ़ाई गई है। इन इंतजामों के पीछे कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP का विरोध प्रदर्शन है। संगठन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। उसका आरोप है कि मतदाता सूचियों की जांच और उनमें किए गए बदलावों के दौरान गड़बड़ियां हुई हैं। चुनाव आयोग इन आरोपों को खारिज करता है और उसका कहना है कि मतदाता सूचियों की जाँच तय नियमों के अनुसार की गई है। दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद कई प्रदर्शनकारी जंतर मंतर की ओर बढ़ने की कोशिश करते नजर आए। पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, जबकि कई लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस की गाड़ियों में बिठाया गया। शनिवार दोपहर तक 400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर है। दिल्ली पुलिस की सीमाओं पर वाहनों की जांच बढ़ाई गई, कई प्रमुख रास्तों पर यातायात बदला गया। दिल्ली मेट्रो के करीब 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास पर पाबंदियां लगाई गई, कई रेलगाड़ियां भी रद्द की गई हैं। केंद्रीय दिल्ली के कुछ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। इन पाबंदियों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक यातायात पर लगाई गई रोक की समीक्षा करने को कहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि सुरक्षा कदमों का मकसद कानून व्यवस्था बनाए रखना है।
0: देश विदेश की खबरों के बाद आइए अब मौसम का हाल सुनते हैं। हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर है, साथ ही पूर्व में पाए जा रहे सक्रिय बादलों का भी असर है। पूर्वानुमान आज रात पूरे देश में रह रहकर वर्षा हो सकती है और खासकर पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर ज़्यादा बारिश होगी और बादल के गरजने की भी संभावना है। और कल सुबह और दिन के दौरान भी रह रहकर वर्षा हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा हल्की एवं सामान्य रहेगी, जो पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। समुद्र में 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं और जनता से निम्न सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है कि बादल के गरजने पर या भारी वर्षा के समय एक सुरक्षित जगह पर रहें, पेड़ के नीचे, खुले मैदान या समुद्र में न जाएं। कल सूर्योदय 5:43 पर होगा।

0: Timberlake sur Chonset. Avenue Béatrice 4 Bonne, Mitiran Bissal, qui, 93 years old, qui, Shimati Shanta Balgobin, Shimati Shanta Balgobin, Pedashinam Baburam, Pedashinam Baburam, or Jubhanu Nam, Sisata Jani Jati, Mitty Hoge, Hungerti, Kaldin Kigarabaji, Kaldin Kigarabaji, and Kikar number 164, Avenue Béatrice 4 Bonne, so Taka and Timson's Karkili, Code God 4 Bonne, Kishmashan Bumili Jajagi, Cremation tomorrow at 11 a.m. Six sal ki ikti yez or ki Shri Krishna Mangro, Shri Krishna Mangro, jo chan naam se zeta jani jate the aur jo Ankle Mausial Castle rehte the ki mrityu ho gayi hun ki article din ke 10 baje kal din ke 10 baje Pittsburgh ki Mura Muha Funeral Parlor se utha kar antim sanskar ke liye Bigara ki shmashan bhumi le jayi jayegi cremation tomorrow at 10 a.m. Avenue Virasami ailleurs Moncellement Raffray, le Hocher Terre Rouge, mais avenue Virasami ailleurs. Moncellement Raffray, le Hocher Terre Rouge, mais Tirali Sal, qui est 43 years old, qui est chez Dinesh Ramnyal, chez Dinesh Ramnyal, Jo Bunti or Ben, nam on s'est jané jaté, or Jo Arkad Kinu, Port Wiki, Beats and जीवल के मालिक थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके घर आवनी व्यासामी आयर मोसलमा गाफ्रेलो शेतेरूर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले वाले दे फ्रेड किशमशान भूमि ले जाएगी क्रिमिशन टुमरो एट नून मोसलमा वर्जे लेबा नंबर दो पेटी वर्जे पॉइंट साब में मोसलमा वर्जे लेबा नंबर दो पेटी वर्जे पॉइंट साब में 85 साल की 85 years old की श्रीमती गोइंदा मा मदुरई श्रीमती गोइंदा मा मदुरई जो मैडम नायक के नाम से ज्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री अंगा मुतु Naiken Madurai Kigher, Monselman Verger, les bains number 2, Petit Verger, Pointe Sable, c'est au Taker, Dafnani Kilie, Saint-Louis, Petite Rivière, Kishmashan Bumi, les Jajagi Funeral tomorrow at 10 a.m. Desai Street, Bobasami, Desai Street, Bobasami, Satasi Salaki, 87 years old, K, Shri Praveen Lal Devchan Karman Shah, Shri Praveen Lal Devchan Karman Shah, जो प्रवीण लाल नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और जो बीजी के होम पालमा कथबोन में रहते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी मंगलवार 13 अक्टूबर को दिन के डेढ़ बजे उनके भतीजे श्री गिरीश देसाई के घर देसाई स्ट्रीट बुबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन ऑन ट्यूसडे 13 अक्टूबर एट 1:30 PM शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है
1: on NBC Play and NBC.mu.
2: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. Neeso.

0: नई सो।
1: नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, यानी कि 6:31 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं अपना ही प्रोग्राम नई सोच। आज हम आपसे बहुत छोटे छोटे से सवाल करेंगे। क्या आपने नोटिस किया है, बहुत टाइम से ऐसा होने लगा है हमारे साथ कि हम हर चीज़ बहुत जल्दी से करने लगते हैं, यानी कि खाना जल्दी जल्दी खाते हैं, सड़क पर अगर जाना है तो जल्दी जल्दी भागते हुए चले जाते हैं, घर पहुँचना है तो जल्दी करते हैं, काम करना हो तो जल्दी करते हैं, कहीं पर भी हम रुक नहीं रहे। लेकिन इतनी भाग दौड़ में क्या हम जिंदगी के अच्छे जो पल हैं उनको इंजॉय कर पा रहे हैं, अपने परिवार को समय दे पा रहे हैं, अपने दोस्तों को समय दे पा रहे हैं, अपने पैशन को समय दे पा रहे हैं? बस यही छोटी छोटी सी बातें करेंगे नई सोच में। आपका स्वागत है आप सभी का नई सोच कार्यक्रम में। मैं साथ दे रही हूँ आपके पूनम।
2: RM3 Radio.

0: नहीं सो।
1: दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि क्यों हम इतना जल्दी जल्दी ज़िंदगी में करने लगे हैं। जैसे हम सुबह का हाल देखते हैं, अलार्म बजता है और हम भागना शुरू कर देते हैं, जल्दी तैयार होना, नाश्ता करना, फटाफट से बस काम पे निकल जाना। या अगर ऐसा एहसास होता है कि भाई हमको कुछ और काम है, या कोई रास्ते में हमें कोई रिश्तेदार मिल जाता है, कोई फ्रेंड्स मिल जाता है, उनसे बात करने का टाइम नहीं होता और बस भागते चले जाते हैं। तो यही चाहते हैं हम कि आप भागने से अच्छा है, बेहतर जब आप अलार्म लगाते हैं उसको आधा घंटा पहले का लगाइए, आराम से उठिए, मतलब आप अपना चाय पीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, थोड़ा आसपास देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा और आपको लगेगा, एहसास भी होगा कि आपका दिन बहुत सुंदर और खूबसूरत जाएगा।
2: RM3 Radio.

0: नई सोच 6:44 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं नई सोच के साथ में। और नई सोच में हम बस इतना ही कह रहे हैं, आजकल हम इतना जल्दी भागते हैं हर काम में। अब आप खाने को ही देख लीजिए, हम खाना खाते हैं और फटाफट से बस खाना डाला और फ़ोन एक तरफ होता है, टैबलेट एक तरफ चल रहा होता है, साथ में टीवी चल रहा होता है और बस खाते जाते हैं। ना तो उसका टेस्ट लेते हैं, ना उसको अच्छे से चबाते हैं, ना तो उसको एहसास करते हैं कि जिसने खाना बनाया कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत से, उसको अप्रिशिएट नहीं करते, बस खा लेते हैं और बस लेट जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि हर चीज़ को थोड़ा सा रुकिए, अपने फ़ोन को साइड में कीजिए, टीवी वगैरह बंद कर दीजिए। बस ये एहसास होता है कि हाँ अरे सुबह से तो हमने देखा नहीं, अब देखने का टाइम है, खाना खाते खाते देख लेते हैं। पर अब जब खाना खा रहे हैं उस समय कोई अच्छी बात कीजिए अपने परिवार के साथ में, तो देखिएगा कितना अच्छा लगेगा खाना खाना भी और आपको एहसास भी अच्छा होगा।
1: RM3 Radio.

0: नई सोच
1: 6:50 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं नई सोच के साथ। और नई सोच में हम बस इतना ही कहते हैं कि हर काम थोड़ा सा धीरे और थोड़ा संभल के। कहते हैं ना कि हर किसी की एक अपनी एक स्पीड होती है। कई लोग वही काम को बहुत स्पीड से जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, कई लोगों को टाइम लगता है। जैसे वीकेंड में हम सोचते हैं अरे घर भी साफ़ करना है, शॉपिंग पे भी जाना है, ये काम भी करना है ख़त्म, और फिर उसके बाद जब संडे आता है तो फिर हम थक जाते हैं और फिर कहीं नहीं जा पाते। और कई बार हम ये सोचते हैं कि सैटरडे संडे सारे काम ख़त्म कर लेंगे, फिर मंडे को दिल नहीं करता काम पे जाने का। तो इसीलिए हम कहते हैं कभी कभी कुछ चीज़ों को स्किप कर दिया कीजिए, अपने मंडे को थोड़ा सा एनर्जेटिक बनाने के लिए आपको थोड़ा सा रेस्ट संडे को चाहिए ही चाहिए। बॉडी को रिफ्रेश होना पड़ता है और कहते हैं थकान से हटना होता है। तो हम तो यही कहेंगे, आप साथ जुड़े रहिए, इंजॉय करते रहिए नई सोच का कार्यक्रम।
2: RM3 रेडियो।

0: नहीं सो। छः बजकर 53 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और हम अभी बस इतना ही कह रहे थे आपसे कि कहते हैं कि जहाँ पर आप जाएं या कोई भी काम करें उसको थोड़ा सा आराम से कीजिए, क्योंकि अगर आपको कुछ रेस्ट मिलेगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके परिवार वालों को आपका टाइम मिलेगा। और बस हम तो इतना ही कहते हैं कि ये नई सोच सिर्फ आप सबकी है, और आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, तो छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हम सब आपके साथ शेयर करते हैं, और हमें भी ये खुद करनी चाहिए। तो आपके लिए बस इतना ही आज के लिए नई सोच में, और इसके बाद हम जुड़ेंगे दिलों की आवाज़ कार्यक्रम के साथ, और हम तो यही कहेंगे जो 1 आवर होगा वो रहेगा टिकटॉक के साथ भी और आपके प्रोग्राम के साथ भी, और उसके बाद जो 1 आवर होगा वो हम लोग आपके मैसेजेस भी लेंगे, आपके गानों की फरमाइश भी लेंगे। इन्जॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल गाने को।
1: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। शनिवार की शाम है, बताइए कैसा दिल है आपका और कैसा दिन, पूरा दिन कैसा गया आपको। और हम भी चाहते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, कोई पुराना फेवरेट से शुरू किया जाए, नया हम चलाएं, कौन सा वाला गाना सुनना का आपका मूड है, तो हमें भी बताइएगा 5250-6200 पर। और अगर आपको कॉल करना है तो आप कर सकते हैं 8 बजे के बाद 4028070 पर। आप सबका स्वागत है RM3 रेडियो मनोरंजन।

0: पर हम तो यही कहेंगे, अभी हम टिकटॉक पे भी हैं, साथ में रहिए और इन्जॉय कीजिए अपने ब्यूटीफुल सॉन्ग को। ये नेक्स्ट गाना जाएगा नीले गगन के तिले, महेंद्र कपूर के आवाज़ में और हम राज मूवी से। बहुत ही सुंदर गाना है आप सबके लिए स्पेशली।
1: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: मुझे पूरी उम्मीद है जितने भी हमारे पुराने लिसनर्स हैं उनको ये गाना बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि सभी की पसंद के अंदर ये वाला गाना फिट हो जाता है, क्योंकि ये ऐसा गाना है चलो दिलदार चलो, मतलब यानी कि रफ़ी साहब ने अपना दिल निकाल के इस गाने को शायद गाया होगा। और कहते हैं कि जब ये गाना गाया जा रहा था उस ज़माने में इतनी चीज़ों का मतलब रोमांस और रोमांटिक मूवीज़ नहीं बना करती थी, पर जब गाना बना तो ब्यूटीफुल, और कहते हैं ना कि रोमांस सिंपल होता था पर बहुत ही प्यारा, और इस तरीके से उन्होंने बनाया। थैंक यू सो मच आप सभी का इस समय साथ दे रहे हैं। टिकटॉक पे मंजुला जी साथ दे रही हैं, संदीप जी के लिए नेक्स्ट गाना चलेगा, वीरू जी साथ दे रहे हैं इस समय, फिया जी साथ जुड़ चुकी हैं, नीलिमा रजनी वीरू जी और कविता जी साथ दे रही हैं, और स्पेशली ललित जी USA से साथ दे रहे हैं, और हमारी प्रकाशवंती जी बेल्जियम से इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं। बिल्कुल हम चलाएंगे एक एक करके, बस हमें थोड़ा थोड़ा सा मौका देते रहिएगा और जुड़ते रहिएगा। ये गाना आप सभी के लिए, एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को।
2: RM3 रेडियो

0: और इस शेल्फ को जरा सरका नहीं तो लंबी बोतल भी फिट हो जाएगी मैडम। सॉरी, और ये इसका रोल बॉन्ड फ्रीजर, बस आधे टाइम में बर्फ तैयार। सॉरी, और हाँ, ये इसका जबरदस्त कंप्रेसर, फटाफट ठंडा करे और बिजली भी बचाए। और इसका स्पेशल फोम वाला दरवाजा, ठंड बाहर आ ही नहीं सकती मैडम, तो बस आप इसे खरीदी लो।
1: Kelvinator, the coolest one.
2: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: 7:32 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज के साथ और यहां पर इतना मजा आ रहा है क्योंकि टिकटॉक पे हमारे सारे

0: जो कि पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो रखे हैं और साथ में जुड़े हुए हैं और सब अपने अपनी फरमाइशें दे रहे हैं, पर सबके नाम भी बताने ज़रूरी लगते हैं कभी कभी। तो मनोज जी साथ दे रहे हैं, दीवान सोफिया मनोज, राजन रघुपत जी लंदन से, और हमारी स्पेशल आरजे रिया भी आज साथ में जुड़ी हुई हैं और उन्होंने भी एक फरमाइश की है, कह रही है कि मेरा भी दिल कर रहा है एक स्पेशल सा अक्षय कुमार का गाना सुनने का। तो बिल्कुल हम चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे, आप हमारे लिए इतने सारे गाने चलाते हैं। तो आज आपके लिए मेरी तरफ से एक प्यारा सा गाना माया रामदोस जी साथ दे रही हैं, वानी जी एफ के एस, अब इसका इनका नाम तो पूरा नहीं पता, कोमल फारूक साई वेदना, और एक स्पेशल रिक्वेस्ट है रोहित की तरफ से। तो हम गाने एक एक करके चलाएंगे, इंजॉय कीजिए गानों को।
1: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: 7:46 हो चुके हैं और दिलों की आवाज़ में आप हमारा साथ दे रहे हैं, चाहे टिकटॉक से, चाहे अपने घर से, चाहे इस टाइम ड्राइव करते हुए। हम तो यही कहेंगे आपके ये जो पसंद के गाने हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, सभी की चॉइस बहुत अच्छी होती है, पर हम यही कहेंगे कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो बस आराम से ड्राइव करते रहें, इन्जॉय करते रहें गानों को। और साथ में हम यही कहेंगे कि अगर जो खाना खा चुके हैं थोड़ा सा घर में ही वॉक कर लीजिए, और अगर कहते हैं ना कि जो शाम होती है, शाम में अगर कोई गाना ऐसा चल जाए जो आपकी पसंद का हो, जिसको सुनने के लिए बहुत दिनों से इंतज़ार में बैठे हो और वो मिल ना रहा हो, और कभी एकदम से क्लिक हो जाए कि हमें यही गाना सुनना है और वो गाना आ जाए, तो उससे बड़ी बात क्या होती है। तो चलिए जी, आप सबकी पसंद के हिसाब से यहाँ पे गाने चल रहे हैं। इस समय हमारा साथ दे रही हैं कोमल स्वीटी, आत्मा राम जी, जवीना, सचिन कुमार, सुनीता, जय नारायण और भी बहुत सारे लोग। तो हम तो आपसे भी को यही कहेंगे, जुड़े रहे, साथ में रहिए, इन्जॉय कीजिए इन गानों को।
2: RM3 Radio.

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
2: 7:58 हो चुके हैं दोस्तों, और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ। और यहाँ पर बहुत सारे हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, जो लिसनर्स हैं, और सबको उम्मीद होती है अपने अपने गाने सुनने की। एक एक करके गाने हम सबके चलाएंगे आपकी पसंद के। इस समय हमारा साथ दे रहे हैं यश, हिमिक्षिका, फियाज, विशाल, कवि, रीना, मीला, दोतिका एंड सबरीना। और साथ में ही है आज जय की वाइफ का बर्थडे, और कह रहे हैं बस एक गाना चला दीजिए, बार बार ये दिन आए। और उम्मीद है कि आप ऐसे ही उनको गिफ्ट देते रहेंगे, ऐसे ही उनके लिए कुछ स्पेशल स्पेशल लेकर आते रहेंगे। हम तो नहीं चाहेंगे कि भी खाली हाथ जाएँ, तो अगर घर पहुँच चुके हैं तो एक गिफ्ट दीजिए, नहीं तो बहुत सारा प्यार उनको बस दे दीजिए। यही एक वाइफ को चाहिए होता है। उनका गाना उनके पसंद का चलाएंगे, और उन सभी लिसनर्स का जिनका आज बर्थडे है या उनके परिवार के किसी भी सदस्य का बर्थडे है, हम उनके लिए भी कहेंगे विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे। हमेशा खुश रहो, इन्जॉय करो अपने दिन को। अब तो चाहे रात हो गई, पर फिर भी अभी आपके अपने आपके साथ है, और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। चलिए जी, जुड़ते हैं अपने सेकेंड आवर में। हम टिकटॉक तो कर रहे हैं बंद, बट एक घंटा हम अभी और हैं। अगर आपको भी कॉल करना है तो आप कर सकते हैं 4028070, और व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है 5250600। इन्जॉय कीजिए इन गानों को, और सबकी पसंद के गाने इसमें लगे हुए हैं, तो बस एक एक करके वेट करते रहिएगा।
0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज। Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: 8:07 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं दिलों की आवाज़ के साथ और मैं साथ दे रही हूँ आपके पूनम। और कहते हैं ना कि जो हमारे मेल्स होते हैं पूरे दिन काम करते हैं, थकते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उनमें इतनी ताकत होती है कि घर पे आके माँ की सेवा कर सकते हैं या माँ को पूछते हैं, वाइफ से बातें करते हैं, बच्चों को देखते हैं, फिर भी होते हैं। पर हमारी लेडीज़ भी होती हैं ना, वो भी थक जाती हैं। और हम तो दोनों को ही कहेंगे कि भाई आप दोनों, कोई बाहर का काम कर रहा है, कोई घर का कर रहा है, कभी कभी दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग है, आउटसाइड काम कर रहे हैं, तो थोड़ा कुछ पल अपने लिए ज़रूर निकालिए। मतलब कहीं बैठिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और दिमाग को ना स्विच ऑफ कीजिए। दिमाग को बस दौड़ाओ मत कि भाई ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा अपनी पसंद का कुछ बनाने का दिल करता है तो उसे बना लीजिए, पेंटिंग करने का मन करता है तो पेंट कर लीजिए, जो अच्छा लगता है घर में, मतलब जिससे आपको खुशी मिलती है वो ज़रूर काम कीजिए। बाकी तो हमारे हम गाने यहाँ से संभाल रहे हैं, आपकी पसंद के चला रहे हैं और हम तो यही कहेंगे जो भी हमारे दोस्त इस समय साथ दे रहे हैं वो कहते हैं कि आज फिर जीने की तमन्ना है, तो ये गाना आप सबके लिए जिनको फिर से जीने की तमन्ना है और नहीं रही तो फिर से जीजिए।
0: RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio. Radio. दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 8:18 हो चुके हैं और हमारे बहुत सारे दोस्त लिसनर्स जो कि तैयारी कर रहे होंगे कल, क्योंकि कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, घर की साफ़ सफाइयाँ होंगे, तैयारियाँ होंगी, स्वीट्स बना रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही होगी। तो बस बस रात थोड़ा सा टाइम अपने आप को दो, रिलैक्स करो, क्योंकि कल सुबह से फिर से आपके पूजा पाठ में शुरुआत होगी, तो फिर तो जल्दी भी उठना पड़ेगा आपको। तो हम तो यही कहते हैं ये टाइम जो है आपका है, थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा, आराम से आगे बढ़ते रहिए और इंतज़ार कीजिए कल सुबह का। जब सुबह होगी फिर एक अच्छे से स्माइलिंग फेस के साथ आगे तैयारी कीजिएगा, जो भी आप भोग रखेंगे, जो भी पूजा का सामान रखेंगे। हम तो ये कहते हैं कि बस ये दिल से होना चाहिए, अगर आपका दिल उसके साथ जुड़ गया तो फिर कुछ भी ना हो तो भी चलेगा, बट वो ईश्वर सबकी प्रार्थनाओं को सुनता है और सबके साथ रहता है। ये गाने सभी आप सबकी पसंद के हैं, तो हम तो आपको बोलेंगे हैप्पी नवरात्रस, बट ये गाना जो है बहुत ही पसंद का है किसी का, अप्रैल फुल मूवी से मोहम्मद रफ़ी एंड सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में, तुझे प्यार करते हैं।

0: RM3 Radio. Radio.
1: इब्राहिम सर स्पेशली आपके लिए।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: 8:34 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं दिलों की आवाज़ के साथ। और ये कार्यक्रम जो चल रहा है यहाँ पर, ये प्रोग्राम, ये बहुत ही इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर सारों की पसंद के गाने चल रहे हैं और मुझे इतने सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं इस प्रोग्राम से क्योंकि उनके गानों की पसंद जो है बहुत अच्छी होती है और साथ में उनके गानों की पसंद के गाने यहाँ चलाए जाते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने का। इस समय हमारा साथ दे रही हैं देवयानी जी, अनीता जी, प्रकाशवंती जी। तो कह रही हैं कि मैं एक गाने पे तो इतना डांस किया है ना आज, मैंने मेरा दिल खुश हो गया है। शी इज़ फ्रॉम बेल्जियम और बहुत इंजॉय किया उन्होंने। थैंक यू सो मच। सुदेवी जी साथ दे रही हैं और इंजॉय कर रही हैं। बाबू अनंतवा जी साथ दे रहे हैं, इब्राहिम सर साथ दे रहे हैं, धानी सर साथ दे रहे हैं। और इस समय अभी हमारी एक दोस्त है रिहाना, रिहाना थोड़ी सी लेट आई हैं बट आ गई हैं। उन्हें कहते कुछ काम था तो बस हम पहुंच गए। तो मैं तो यही बोलूँगी कि बस आप साथ रहें, एंजॉय कीजिए अपने गानों को। और ये नेक्स्ट सॉन्ग है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में रंग मूवी से, एंजॉय कीजिएगा साथ में। हमारे साथ जुड़े रहिए।
0: RM3 रेडियो।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज।
1: 8:45 हो चुके हैं दोस्तों और अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। कल से नवरात्रि की खुशियां भी शुरू हो रही हैं, तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे। अब ये जो दो आखिरी गाने हैं आप सबके लिए हैं। मैं थी आपके साथ पूनम। मैं तो आपको कहूँगी अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि। फिर से मिलेंगे अगले फ्राइडे सेम टाइम पे 7 to 9, और इंजॉय कीजिएगा गानों को और अपनी जिंदगी को।
0: RM3 Radio.

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: Continuous music.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस,
2: भोजपुरी, भोजपुरी तड़का, तड़का।
3: आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
2: भोजपुरी, भोजपुरी तड़का, तड़का। रात के 9:05 हो गल भाव भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला हमर सब कोई श्रोता लोगन के तहे दिल से स्वागत करत है। हम है रत्ना, आप सब कोई के साथ देवे खातिर चलाल है अभी से लेके रात के 9 ले मजेदार चौचक चौचक गीत बढ़िया बढ़िया भोजपुरी संगीत के संगे सब कोई के मनोरंजन करब जाओ। और जे तोरा मन बा कोनो गीत सुने के 4028085 पर हमने के टेलीफोने करे सकब। तो चला आज के कार्यक्रम के संगे संगे बस साथ दे रही है जब मजेदार कार्यक्रम के शुरुआत करब जाएगो बढ़िया गीत संगे। 2005 के बरिस में आल है गीत रंभा राम तोहल के आवाज में रखल ये फुलिया मोरे बाबा के। तो चला है गीत के साथ करब जा शुरुआत और मजेदार कार्यक्रम आगे बढ़ी बढ़िया बढ़िया चुटकुला बढ़िया बढ़िया संगीत के संगे।

भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का 9:10 भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम संगे हई जा पर हमनी के ढेर कोई श्रोता लोगन चल चला आज के कार्यक्रम में बहुत मजेदार गीत संगे आप सबको हमनी के साथ देवे सकबा और हई जा पर हमनी के 4028085 पर हमनी के टेलीफोने करे सकबा मेसाज विदा करे खोजत हवा त 5251705 पर तो हमने के मेसाज विदा करे सकबा त चला आज के कार्यक्रम के हई पहला पसंदीदा गीत नवीन लक्ष्मण जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन साथ देवत हवन चित्रा जी और रोजबेल से वो हमनी के संगे जुड़ गल हवन निवेदिता और सच्चिदानंद जी हवन मेबर्ग से ललिता और धनराज जी साथ देवत हवन हमनी के मौदाल बिया बगल से राज और अमृता उबिलक साथ देवत हवन न्यू ग्रोव देने से और रमेश और प्रीति जी गांव बुआ देने से तो बस ऐसे साथ देते रहिए जा और राजा बंधु और संगे संगे हमनी के आवाज में रखल हई पहला गीत के वो पसंद करे हवन मांग करत हवन तो जरूर तोहर खातिन चलाओ अब जा है ये गीत आशा कर अब जा है गीत तोरा बहुत अच्छा लगी और ये चुटकुला के द का बोलब हो हमार चचा जोन है ना कबो कबो कैसन कैसन बात बोल देवेला नहीं जाने ला उनसे कहाँ से ओकर कपार में है सब चलावेला हमनी के बोले है जोन जिंदगी है ना हाँ हम बोली बहुत डिफिसिल है चचा बोले हाँ है जिंदगी जोन है को जंग है हम बोली हाँ चाचा है तो बिल्कुल तू सच्चा बात बोला था वह जंग है काहे के रोज लड़ाई झगड़ा और जिंदगी में जितना समस्या होला बोले हाँ जिंदगी जोन है वो एगो जंग है जबले तोहर घरवाली तोहर संग है समझ गई ले का हो चाचा ऐसे बोला था वह चाची तोहर कितना सेवा करेला बोले सेवा हम जानीला कितना सेवा करेला हमार जब देखा हमार संगे झगड़ा करते रहेला

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम कोई चाचा के हइये बोलन कि चाची के देख के तनी प्यार से बतियाह, काहे तू इतना खिसिया खिसिया के बतियात हुआ, हइये से चाची तनी खिसिया जाला तोहर से। और जब मन करी ओकरा त चाहिला ओकर खातिर एगो गीत मांगे के हो, रोज रात के रेडियो मॉरिशस में चलेला भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 9 बजे से लेके 11 बजे ले। तो चला आज के कार्यक्रम के बढ़िया बढ़िया गीत संगे सजाव अब जाओ, और जोन हई जोन गीत है तू ही पसंद करके हमनी के टेलीफोने करके बतावत हवा है, ये से कार्यक्रम बहुत जस्ती जोली हो जाला। तो चला अगला जोन गीत है सुनीता जी खातिन चलाओ अब जाओ, उनका 3 गो बहिन विमला, अमृता और वीना जी हमेशा बहुत प्यार से साथ देवेलन, और विक्रम कोलाचन के आवाज में रखल दो दीपो दी पकड़ी है गीत, तो बहुत खुशी हवन आज सुने के। तो चला हाई गीत करब जा उनकर खातिन, जो जितना कोई साथ देवत हवन जे तोरा मन बा गीत सुने के तो जरूर बेझिझक हमनी के टेलीफोने करे सकबा, और तनी तनी पाशंस धरे के सब कोई के गीत चलाओ अब जा, और हमनी के चाचा के का बोलब हो। अभी गर्मी शुरू हो गल बा ना, तनी गरम करा था, चाची के कौन दिन बोले तनी पानी आन, तो चाची बोहे बोले का है तोरा प्यास लगल बा, तो चाचा बोले नहीं हमार गल्ला चेके करब देखत हई कि चुआ था कि नहीं, आदमी पानी काहे मांगी हो, प्यास लगी तभी पानी मांगी ना, अभी तो ढेर जगह पर पानी नहीं मिला था।

0: भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का 9:24 हो गल बा और चला आज के कार्यक्रम के आगे धकेला था 10 तारीख बाजे अक्टूबर के 10 दिन निकल गल और इस सामदी के दिन है तो सामदी के दिन तब बहुत मजेदार दिन रहेला काहे के अपन परिवार संगे एगो बढ़िया समय बीतेला तो चला बढ़िया बढ़िया समय बितावे खातिर बढ़िया बढ़िया गीत भी चलावत है और हैजा पर सोना नयन के आवाज में रखल गीत के जो मांग करल हवा करले हवन वह विजय बेनी प्रसाद शामुनी देने से हमने के साथ देवत हवन सब दूली परिवार बेनी प्रसाद परिवार और उनकर खास दोस्त हवन शामुनी देने से गणेश जग नारायण और मौत अबा देने से शास्त्री बुनवाली तो चला सुनते सुनते बढ़िया बढ़िया गीत के साथ एगो अच्छा मूड बन जाला सुना नोयन के खाले पीले के हई गीत खाला पीला काल से कार्यम शुरू हो जाए खैया फल खैया वेजिटोइये बन जाइया और 9 दिन 10 दिन लगातार दुर्गा मैया के गीत गावब जा दुर्गा मैया के प्रार्थना करब जाता चला आज के कार्यक्रम के संगे आगे बढ़ब सौरी हमर चाचा जोन है ना जानेला कबो कबो अच्छा बात बोलेला कबो कबो चाची संगे झगड़ा करेला कौन दिन चाची के बाल के देख के एगो शायरी करे लगल चाचा बोले हाँ तोहर जुल्फ हाँ ऐसन जुल्फ ऐसन बार हर तरफ हंगामा मचा के रख ले बा तो चाची बोले हट हो का हो हमारा ऐसा तू बात बोलत हवा बोले हाँ हम शायरी लिखले हाँ है जन तोहर बाल है सगड़ो सगड़ो एगो ऐसा हंगामा मचा के रखले बा कबो दाल में कबो सब्जी में कबो रोटी पे कब्जा जमा के रखले हवन तब जाके चाची के समझ में आल कौन ची बोलत हवन चाचा

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और 9:32 मजेदार कार्यक्रम संगे बहुत कोई हमनी के साथ देवत हवन और हाइजा पर हमनी के साथ देवत हवन गायत्री जीन वेल फ्रांस से बेटा अजय मामी हवन कल्याणी मोहन मेबक दिने से और मोतायलोंग से उनकर भौजी शकुंतला और खास दोस्त गीता बाई हमेशा साथ देते रहलन लागी ना ही छूटे राम के हई गीत उनकरा बहुत मन बा खुशी रहलन स हई गीत सुने के हर बार त बस खुशी करब स तोहरो भी और ई मजेदार चुटकुला संगे साथ देवब जा चाची जानेला आजकल बहुत इंटरनेट पर ऐसन ऐसन समाचार देखेलन स त कोन दिन लैन के समाचार देख लेलक लैन के जन प्रधानमंत्री जी हवन मोदी जी उनकरा एगो समाचार में बोलन कि फजीर के हई देश में रहल दूसर दोपहर के त दूसर देश में रहल रसांझ के त दूसर देश में रहल त चाचा के बोले हमने के एगो दुविधा बा हई कैसे एक गो दिन में तीन तीन जगह पर तीन तीन देश में घूमेलन स कैसे होला हो चाची चाचा बोले उनकर पत्नी नहीं है ना हाइये से जे पत्नी रहते तो फजीर से लेके सांझ ले सुपिया मौसे में रहते फजीर से सांझ हो जाती

0: भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा। भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी रखत है और मजेदार गीत संगे चला अगला गीत एक और बार सोना नोयन के आवाज में रखल कौन फुलवा फुलेला हई गीत विश्वानी दू मंजी मांग कर ले हवन और हई गीत चलाओ अब जाऊन कर दूगो बहिन इंदिरा और शारदा दूगो सखी नीला और प्रतिभा शोभा जी गीता गजाधर और जितना कोई सुनात हवन उन सब कोई खातिर कौन फुलवा फुलेला सोना नोयन के आवाज में रखल हई गीत और का बोलब चाचा कौन दिन चल गल लाबोंक में और लाबोंक में जाके उ छोकरवा से बोले आ इतना पैसा ला हाई हमर थैली में रखल बा इतना पैसा ले के हमर कोत में डाल दिया था तनी तो जैसे उ लाबोंक के छोकरवा सा खोलन नोट देखलक तो बोले चाचा जी हाई तो सब नकली नोट है बोले तू का त्राका करत हवा कोत तो हमार है ना हमार कोत में डाल द उढ़ील द तरी त्राका नहीं करा हमार कोत है ना तो हम रखब हई पाफे नोए जैसे नकली नोट रही हम खर्च कर देब तू त्राका नहीं करिए बोले अरे चाचा नहीं

देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुद ही चुनने से क्या होगा। अरे गंदे पानी पीकर प्यास बुझा लिया तो कुआं में डुबकी लगा।

अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या

चला अगला गीत सुनी था ननगु के आवाज में रखल है गीत ह घास कर चाची शांता सुकागी खातिन उनकर पतो हवन किरण चार गो बेटा सुदेश गाविन सुजीत और अशोक और साथ देवत हवन उनकर नाती भावेश और नातीन हवन संजना है ये गीत करब जा अनिता जी खातिन जे फ्लिक ऑफ फ्लैग देने से अपन परिवार संगे अपन सब संगतिया खास दोस्त संगे जुड़ गल हवन और बोले नवरात्रि आवता त नवरात्रि काल से शुरू हो जाए दुर्गा माँ के एगो बढ़िया गीत डाल दा हमर खातिन काहे नहीं हो और हैजा पर वाकवा देने से हमनी के सुदेवी जी बहुत प्यार से साथ देवत हवन और थ्रियो लेके उनकर बहिन ललिता कुशल और दीदी सुनीता शोभा देवी ना मालेगा के हवन और राम रतन परिवार खातिन अगला गीत उनकर खातिन जरूर चलाओ अब जा तो बस ऐसने साथ देते रहिए जा और हमर चाचा चाची के किस्सा तक जारी रही का बोलब हमर चाचा के बाद चाचा कौन दिन बोले हम तो चाहत रहली एगो समझदार महिला से शादी करे तो चाची ऐसे मुंह ऐंठ के बोले हाँ तोहर तोर से कौन समझदार छोकरी शादी करी बोले हम हाँ ये साबित करे खोजत है कि तू भी समझदार नहीं हुआ

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम संगे लंदन से जुड़ गल हवन राजन रघुपत जी और हमनी के बहुत प्यार से जुड़ गल हवन कुमारी जी दागोचे देने से सब उस्ताबिया परिवार के साथ। और आज आखिरी दिन रहल पितृ पूजा के, सब कोई निमन से पूजा कलन, सब कोई अपन पितर लोग के

0: बिल्कुल जल चढ़ाइलन और साथ ही साथ उनकर शांति खातिन सब कोई प्रार्थना करलन त चल हम टीम के देने से सब कोई खातिन हइए प्रार्थना करब जा कि सब कोई खुशहाली से रहियन जा सब कोई स्वस्थ रहियन जा और आज के कार्यक्रम के साथ मजेदार हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ब से और फोन जूसाक से ऊ माँ जी हमने के संगे जुड़ गल हवन उनकर दू गो प्यारी नातीन हवन एगो हवन वाकवा देने से आरोही और गौपा से आहाना और ये आरोही हमने के गीत मंगले हवन सरिता बुधू के आवाज़ में रखल चिंगन मिंगन पानी भरे पानी नहीं बा सच्चे के अब तो पानी ही नहीं बा ढेर कोई हमने के हये बोलत हवन कि पानी के तो बहुत राका हो गल बा चला प्रार्थना करब जा ईश्वर से कि तनी पनिया बरसा दे और ही मजेदार कार्यक्रम संगे साथ देते रहिए जा हंसते मुस्कुराते और का बोलब जाने ल मौसम विभाग से ऐसन चेतावनी चचा सुन लेलक हाँ हो चेतावनी ऐसन रहल कि काल तूफान और ढेर पनिया बरसी तो चचा बोले सचे पनिया बरसी औरी चेतावनी में है बोलल रहल कि जे तोहर हिया ढेर पनिया बरसता तूफान आवता औरी घर के ऊपर में कोनो काम रही तो तू नहीं जाइया तोहर बुढ़िया के विदा कर दिए तो चचा तो सोच में पड़ गल तो सुनत हवन चेतावनी में कौन ची बोलता बोले विदा कर दी अपन बुढ़िया के लाहो घर के ऊपर में काम करे खातिन जब तूफान चलाए काहे के जाने ल तूफान के तूफान संगे जो मुकाबला होला उ नीमन से हो जाला तू घरे में बैठिय अपन बुढ़िया के विदा कर दिया तू का तूफान से कम है।
1: I'm

0: MBC Radio, your music companion.
1: भोजपुरी तड़का
2: आज की रात रत्ना के संगी MBC

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

ृष्णाष्टकमारय वसुदेवासुतं देवं कंसचानुनमर्दनं।

0: जम्बिके ओम शक्ति सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम
1: हरि ओं अस्या श्री भगवतो देवारे ब्रह्मा श्रीमद्मकिरांकुरे ब्रह्मांतरागस्य देवादेव चरकत्रुं वीरचक्रजनं श्री महालक्ष्मीदेवेभ्यो नमः श्री लक्ष्मी

परिगप्रिगा कृष्णपतिगमवतारजम्।

Ooh.